आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 45 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणंद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद की भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है गुजरात के सांणंद

0: संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉ जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पर्दापण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकहिना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आरंभ मातृवंदना से। आंधियों में भी जो झुक न सके, आंधियों में भी जो झुक न सके, दुश्मन भी जिनसे कभी रुक न सके, बढ़ेंगे ऐसे हम वतन के वास्ते, कोई भी रोक न पाए हमारे रास्ते।

न मांगे हम हीरे मोती, न मांगे सोना चांदी, हमको ना होने देना बुरी चीजों का आदि, बस अपने चरणों में देना हमको थोड़ा सा स्थान, सच्चे मार्ग पर चले सदा प्रभु, ऐसे दो हमको ज्ञान।

पंडित राजन मिश्रा और पंडित साजन मिश्रा की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना राजेंद्र शुक्ल के स्वर में। आइए अब सुने ये राम भजन। प्रभु श्री राम मर्यादा, आदर्श और प्रेम के प्रतीक है। उनके जीवन का हर प्रसंग हमें जीना सिखाता है। यहाँ उनके पावन चरित्र को समर्पित है।

0: ये थी आज की वंदना। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:20 हुए हैं। आइए सुने प्रकाश किरण।
1: दैवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है उनके लक्षण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं,

0: मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण करना, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग तथा चित्त की चंचलता का अभाव होना, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब प्राणियों में हेतु रहित दया भाव बनाए रखना, इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, स्वभाव की कोमलता तथा लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा भाव रखना और व्यर्थ चेष्टाओं से दूर रहना।
1: तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोः नाति मानिता भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत।
0: तेज, क्षमा, धैर्य, अंतर बाह्य शुद्धि, शत्रुभाव का अभाव एवं अपने में बड़प्पन का अभिमान न रखना आदि दैवी संपदा वाले पुरुष के लक्षण हैं।
1: दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम।
0: अब आसुरी संपदा

0: संबंध में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं।
1: दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मा शुचः संपदं दैवी मभिजातोसि पांडव।
0: दैवी एवं आसुरी दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है, इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, तू तो दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है।
1: प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते।
0: हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य तो कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होना और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होना भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि होती है और न श्रेष्ठ आचरण तथा सत्य भाषण ही होता है।
1: असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् कामहेतुकम्।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रकाश किरण। आलेख और प्रस्तुति थी उमा गर्ग और पुष्पा अग्निहोत्री की। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का गायन।

शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमाचल कन्या उमा की हजारों वर्ष की तपस्या पूरी हुई। उधर जब से सती ने शरीर त्याग किया था, तब से ही शिव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। पृथ्वी पर विचरण करते हुए कहीं वे मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं श्री राम के गुणों का वर्णन करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब स्वयं भगवान राम ने उन्हें पार्वती के जन्म की कथा सुनाई और उनसे आग्रह किया कि वे जाकर शैल कुमारी से विवाह करें। माता पिता गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे ही शुभ समझकर माननी चाहिए, ऐसा मानकर शिवजी ने भगवान राम की आज्ञा मान ली और सप्तर्षियों को उमा के निर्णय की परीक्षा लेने हेतु भेजा। ऋषिगण ने कई प्रकार से नारद जी की दूसरों का घर उजाड़ने वाली आदत का वर्णन करके उमा को शिवजी से विमुख करने की चेष्टा की, किंतु वो अपने निश्चय पर अडिग थीं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर शिप्रा बोस और रामकिशन चंदेश्री का था। संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट।
1: निदान पहल कीड़ा होय से तना छेदक। ये कीड़ा फसल के पोडरा तो बेरा और पील धर तो बेरा जुगे करुन नुकसान अमराय से। ये कीड़ी मन फसल चो तना भागनी भीतरे ओलुन खौक मुरियाय से। एचो कारण ने जुगे करुन बूटा सूखे से आरु बाली निकरलो ने बले सूखा दखा दय से आरु बूटा के खंडिक झिकुन दिलो ने फुकनाय बहारिया ऐसे। एचो निदान काजे कीड़ी मन के मरला तो काजे पहल फसल चो पलहार अलोवेरा ये थाने कार्बो फ्यूरान 3G नाव चो उखत 33 किलोग्राम 1 हेक्टेयर बल्ले 2.5 एकड़ बेड़ा चो हिसाब ने देतो राय। असने बूटा पील धरतो बेरा कारटाप 4G 25 किलोग्राम नहले फिप्रो नील उखत 0.3G 25 किलोग्राम 2.5 एकड़ बेड़ा हिसाब ने देतो राय। असने धान पोडरा तो तमल ने मोनोक्रोटोफास 2 मिलीलीटर नहले क्लोरोपायरीफास 3 मिलीलीटर के 1 लीटर पानी चो हिसाब ने छिड़काव करतो राय। असने दूसर कीड़ा होय से गंगई। ये कीड़ी बले धान फसल के जुगे नुकसान अमराय से। ये कीड़ी बूटा के पक्की बाली एक पाना निरलो बेरा नुकसान अमराय से और भीतरे भीतरे बाली के खाउन दय से जेचो कारण ने तना भाग ने पोंगा आसन होय से और धान ने बाली नी आए। ये कीड़ी चो निदान काजे पलहा ने कार्बो फ्यूरान 3G 33 किलोग्राम 2.5 एकड़ बेड़ा हिसाब ने बेड़ा ने देतो राय। दूसर हिसाब कर दो ले बूटा पील धरतो बेरा फोरेट 10G 10 किलोग्राम 2.5 एकड़ चो हिसाब ने नहले फिप्रोनिल 0.3G 25 किलोग्राम 2.5 एकड़ चो हिसाब धरून बेड़ा ने देतो राय। असने गोटो कीड़ा होए से माहू तो धान फसल चो

0: किलोग्राम अढ़ एकड़ बेड़ा चो हिसाब ने ये उखद के देतो राय। असने पील धरतो बेरा इमीडाक्लोप्रिड नाव चो उखद 75 मिलीलीटर अढ़ एकड़ चो हिसाब ने बेड़ा ने देतो राय। असने माटी रंगिया माहू काजे बूटा पील धरतो समय ने कार्बोरिल 2 ग्राम 1 लीटर पानी संगे देतो राय। असने बूटा पोडरातो बेरा इमीडाक्लोप्रिड नाव चो उखद 100 मिलीलीटर अढ़ एकड़ चो हिसाब ने बेड़ा ने देतो राय। असने बाली निकरतो बेरा इमीडाक्लोप्रिड नाव चो उखद 125 मिलीलीटर 1 हेक्टेयर भले अढ़ एकड़ बेड़ा ने हिसाब धरून भाती देतो राय। दादा दीदी मन असने गोटो कीड़ा होय से जेके बोलसो चितरी। ये कीड़ा नानी रलो बेरा फसल के जुग्गे नुकसान अमरा हुआ है। ये कीड़ी पाना मन के दोनों बाटले कटा कटा जोड़न भाती पाना चो हरा भाग के रोखुन खाए से जिचोले पाना ने पंडरा धारी पड़े से। इचो निदान का जे बूटा पील धरतो बेरा क्लोरोपायरीफास नाव चो उखद 1500 मिलीलीटर अढ़े एकड़ बेड़ा चो हिसाब ने धरून भाती एके देतो राय। असने बूटा पोडरातो बेरा फिप्रोनील नाव चो उखद 800 मिलीलीटर अढ़े एकड़ हिसाब धरून भाती देतो राय। असने गोटो कीड़ा होए से बंकी। ये कीड़ी वाले धान चो फसल के खूबे नुकसान अमराय से और ये कीड़ी पाना के ऊपर ले कतरून हुंचो खोल असन बनाए से और एचो भीतरे ओलून पाना चो हरा दखा देतो बीती जीनिस के रोघुन खाए से। एचो को फसल ने होलो ने पाना ऊपरे कतरलो महा और पंडरी धारी असन दखा दए से। तो ये कीड़ी के मरला तो काजे पील धरतो बेरा इंडोसल्फान नाव चो उखद 850 मिलीलीटर नहले मोनोक्रोटोफास 850 मिलीलीटर उखद अढ़ एकड़ हिसाब ने देतो राय। असने गोटो कीड़ा होय से गंधी बग। ए नाव चो नानी बड़े कीड़ा दोनों पाना और बाली ले रस के चूह को नुकसान अमराय सर। बाली निकरतो बेरा एचो कोप जुगे करुन होय से। एचो निदान काजे मैलाथियान चो कार्बोरिल चूर्ण 30 किलोग्राम के अढ़ एकड़ बेड़ा चो हिसाब ने बेड़ा ने भुरकुन देतो राय। और गोटो कीड़ा होय से कटुआ। ये कीड़ी के फौजी कीड़ा वाले बोलुआत। ये कीड़ी फसल चो पलहा बेरा पाना के और बाली निकरतो बेरा बाली के कार्टून बेड़ा ने घसराउन दे हुआ है। एचो निदान काजे पलहा ने ये कीड़ी चो कोप होलो ने फिप्रोनील 1000 मिलीलीटर अढ़ एकड़ बेड़ा चो हिसाब ने बेड़ा ने देतो राय।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि समय की बेड़ा खड़ा चौगोट। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। हुलहुली कार्यक्रम में आज सुनिए भागीरथी और साथियों का बजाया बोहरिया माता पाड़।

हुलहुली कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भूरिया मातापाड़। वाद्य कलाकार थे भागीरथी और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं।

इंग्लैंड के लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड लंदन में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का फाइनल मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे आज शाम 6:30 से शाम 6:45 तक, शाम 7 बजे से रात 8:45 तक, रात 8:15 से रात 9:30 तक, रात 10 बजे से रात के 11 बजे तक और रात 11:10 से खेल की समाप्ति तक। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 9:30 पर सुनेगा रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जिले की चिट्ठी आप सुन सकेंगे शाम 6:05 पर। इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:10 पर हमारे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर के अंतर्गत आप सुनेंगे हमारा बस्तर। इसमें आप सुनेंगे आदिम जनजातियों का गढ़ बस्तर विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे आशा रानी पटनायक और होगी मधुर गीतों से सजी मधुरिमा। हल्बी समाचार बुलेटिन सुनिएगा शाम 7:30 पर। सुबह 8:30 पर आप सुन सकेंगे विभिन्न बोलियों में लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। बच्चों का कार्यक्रम बालबाड़ी होगा सुबह 9 बजे। सुबह 9:30 पर सुना जा सकेगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम गुलशन सुनेगा सुबह 10 बजे। इसमें सुनिएगा नए तराने। फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। प्रस्तुति मनिंदर सिंह देवकुंड की होगी। दिन के 11:30 पर सुना जा सकेगा बस्तर के लोकगीतों का कार्यक्रम गुड़दुम। कार्यक्रम रुसरुसा आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे। इसमें सुनिएगा लोकगायक सुलोचना सोसी सेना, गायिका होंगी बेलमती नाग और रेमे। दोपहर 12:30 पर होगा शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। बेड़ाखड़ा चौगुट का पुनः प्रसारण किया जाएगा दोपहर 1:05 पर। दोपहर 1:10 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम कला और कलाकार आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। देशभक्ति गीत आप सुनेंगे शाम 5:05 पर। शाम 5:10 पर सुनेगा युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकण्डक्टर संयन्त्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रान्तेः आगामि चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकण्डक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000-2,000 यावत् भारते 5 सेमीकण्डक्टर संयन्त्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21वीं शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः सानन्दक्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयन्त्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक सञ्जालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य 10 दिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्षनेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीन सत्रमस्य मासस्य 20 दिनांकात् अगस्त मासस्य 23-10 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजु सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलाई मासस्य 20 दिनांकात् संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् अद्य अंत्य

0: द्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलं सम्मुखीकरिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ अष्टवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र की में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया।

0: इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए ये संदेश।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए ये बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1-5-1-0-2।
5: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
6: पवन के ठंडे झोंके के साथ
5: हिलोरे लेगी
6: आकाश की वाणी।
5: आकाशवाणी
7: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
5: या फोन करें 222-150 या 222-400।
6: 222-150 या 222-400।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

नमस्कार। जगदलपुर सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को रूपाली पारेख का स्नेहिल अभिवादन। नमस्कार। आज के नमस्कार जगदलपुर के इस अंक में आपके लिए है हमारा बस्तर और मधुर गीतों से सजी मधुरिमा।

श्रोताओं, आज 5 जुलाई है। 5 जुलाई को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय वर्क होलिक्स दिवस यानी कि राष्ट्रीय कर्मठ दिवस आज ही हम मना रहे हैं और घर के जीवन में संतुलन बनाए रखने की यह दिवस याद दिलाता है। काम ही सब कुछ नहीं है। क्या आप जल्दी ऑफिस आते हैं, लंच छोड़ देते हैं और देर तक काम करते हैं, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ऐसा करते हैं? यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो इस श्रेणी में आते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है श्रोताओं कि वो लोग यानी जो काम के दीवाने हैं। जी हाँ, काम के प्रति अत्यधिक लगन रखने वाले व्यक्ति को हर समय व्यस्त रहने की आवश्यकता महसूस होती है, जिससे समस्या उत्पन्न हो सकती है। वे ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जो आवश्यक नहीं है, या परियोजना को पूरा करने के लिए अनावश्यक है, या अनावश्यक कार्य अक्षमता का कारण बनते हैं और वास्तविक उत्पादकता से ध्यान भटकाते हैं। काम के प्रति अत्यधिक लगन रखने वाले व्यक्तियों को सहकर्मियों को कार्य सौंपने या उन पर भरोसा करने में कठिनाई हो सकती है। एक ही समय में बहुत अधिक काम लेने के कारण उन्हें संगठनात्मक कौशल में भी समस्या होती है। श्रोतो, एक ही समय में बहुत अधिक काम लेने के कारण उन्हें संगठनात्मक कौशल तो होती ही है, साथ ही काम के प्रति अत्यधिक लगन रखने वाले व्यक्तियों के लिए समाधान है कि वे थोड़ा पीछे हटे, खुद को पुनर्गठित करें और अपनी गति धीमी करें। लगातार तनावपूर्ण कार्य करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए यह दिन हमें यह सिखाता है कि कार्य के साथ साथ आराम, मनोरंजन और अपनों के साथ समय बिताना भी उतना ही आवश्यक है। नेशनल वर्कहोलिक्स डे यानी कि राष्ट्रीय कर्मठ दिवस एक अवसर है अपने जीवन शैली को पुनर्मूल्यांकन करने और वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने की दिशा में कदम उठाने का। जी हाँ श्रोताओ, आप कर्मठ हैं, अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हैं, लेकिन अपने आप को समय देना भी बहुत ही आवश्यक है।

0: अभी आप सुन रहे थे संजू फिल्म का गीत। आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।
1: जीएसटी ने सबले बड़े सहायता खातो प्यूतो जिनिस मन ने मिरली से डबल रोटी छेना पनीर उपरे एबर जीएसटी नी लागे दे एचे संगे 33 ठान जरूरी उपाय मंचो कीमत बले कम होली से असन ले एबर इलाज काजे खर्चा बले कम लागे दे लाइफ इंश्योरेंस उपरे बले जीएसटी चो पूरा छूट मिरली से जे चोले एबर पॉलिसी घेनतोर बले सरल होय दे। नानी कार अरु 350 सीसी तक चो मोटरसाइकिल उपरे जीएसटी 28% ले कम करून 18% होली से असन ने गाड़ी अरु मोटरसाइकिल घेनतोर एबर आगे ले सस्ता हो सके।
2: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे

0: से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं हमारा बस्तर। इसमें सुनिए आदिम जनजातियों का गढ़ बस्तर विषय पर वार्ता। वार्ताकार है आशा रानी पटनायक।
2: बस्तर मंडल जो महाकांतर, चक्रकोट, दंडकारण्य क्षेत्र जैसे अनेक नामों से संज्ञापित है, यह अपने रत्न गर्भा पृथ्वी के भीतर अनेकानेक संपदाओं से विभूषित है। बस्तर अनेक ऐतिहासिक खंड में चमकता सूर्य सा है, क्योंकि यह 3 प्रांत ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के बीच एक द्वीप सा बन गया है। ऐतिहासिक, पौराणिक, रहस्यमयी भारत के आदिवासी क्षेत्रों के अंतिम छोर में से एक प्रदूषण मुक्त एवं शांत बस्तर में एक नए विश्व की खोज की है। बस्तर एक ऐसी खोज है जो आपकी इंद्रियों को जागृत कर देगी, मस्तिष्क को प्रेरित करेगी और आपकी आत्मा व शरीर को तरोताजा कर देगी। यहाँ एक अद्भुत अनुभव है। बस्तर प्राचीनता एवं आधुनिकता, प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक विभिन्नता का सुंदर समन्वय है। यह एक ऐसी अनभूत पहेली है जिसे हल करना शेष है। बस्तर स्वयं इस रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए प्रेरित करता है। छत्तीसगढ़ राज्य के मुकुट पर चमकते मणि के समान बस्तर की सीमाएं ओडिशा, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश की सीमाओं को छूती हैं। बस्तर का लगभग 60% हिस्सा हरे भरे जंगलों, पश्चिमोत्तर भाग ऐतिहासिक अबूझमाड़ी, आदिवासी पहाड़ियों व दक्षिणी हिस्सा बैलाडीला की खनिज खदानों से घिरा हुआ है। कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान का फैला हुआ घना एवं भयानक जंगल, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, प्राचीन एवं रहस्यमयी गुफाएं, सुंदर जलप्रपात एवं नदियां, जैव वैज्ञानिक रोमांचक खेलों के शौकीन व कलाकारों के लिए स्वर्ग समान है। माँ दंतेश्वरी बस्तर के राजघराने की देवी है। कहा जाता है कि देवी इन पहाड़ी जंगलों में राजा की रक्षा करते हुए उनका मार्गदर्शन करती है। बस्तर दशहरा का सबसे बड़ा भव्य व सुंदर प्रमुख त्यौहार है, मगर इसका श्रीराम अथवा उनके अयोध्या लौटने से कोई संबंध नहीं है। यह पर्व दंतेश्वरी देवी को समर्पित होता है। बस्तर पिकनिक, चित्रकारी, रोमांचकारी यात्राओं के लिए सबसे आकर्षित एवं उपयुक्त स्थान है। बस्तर की जनसंख्या में लगभग 3/4 लोग जनजातियों के हैं, जिनमें से हर एक की अपनी मौलिक संस्कृति, मान्यताएं, बोलियां, रीति रिवाज एवं खान पान की आदतें हैं। बस्तर की जनजातियों में गोंड जैसे मारिया, मुड़िया,

संस्कृति, मान्यताएं, बोलियां, रीति रिवाज एवं खान पान की आदतें हैं। बस्तर की जनजातियों में गोंड जैसे मारिया मुढ़िया बस्तर की जनजातियों में गोंड जैसे मारिया मुढ़िया

अबुझ माड़ी, शर्मिले व संकोची होते हैं। एकांतवास करते हुए वे घने जंगलों में शिकार करते हैं और अन्य वस्तुएं इकट्ठी करते हैं। नृत्य महोत्सव के दौरान सींगों से सजे मुकुट पहनने के लिए जाने जाने वाली जनजाति माड़िया सामाजिक होती है। उत्तरी बस्तर की खेती किसानी करने वाली मुरिया जनजाति सबसे अधिक व्यवस्थित होती है और घोटुल के कारण जानी जाती है। यह युवा एवं कुंवारे लड़के लड़कियों के लिए एक विशेष स्थान होता है, जहां वे अपने बड़ों से दूर आपस में मिल सकते हैं। यहां उनकी सामाजिक शिक्षा की खास व्यवस्था होती है, जिसमें नृत्य, गीत, संगीत आदि भी शामिल होते हैं। यह प्रथा मुरिया समाज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। बस्तर के त्यौहार आदिवासियों की प्राचीन एवं सांस्कृतिक प्रथाओं को दर्शाते हैं। बदलती हुई रीतियों में होने वाली प्राचीनतम उत्सवों के आदिवासी नृत्य एवं संगीत से प्रकृति निखर उठती है। दंतेश्वरी तात्कालीन राजा के राज्य की देवी है। आदिवासी अपने देवी देवताओं और पवित्र आत्माओं की पूजा करते हैं, जिनका संबंध प्रकृति के असंख्य रूपों से होता है। भारत के अधिकांश भागों में दशहरा श्री राम की अयोध्या वापसी के रूप में मनाया जाता है, लेकिन यह बस्तर में मुख्य रूप से मां दंतेश्वरी देवी पर केंद्रित होता है। यह त्यौहार पूर्ण रूप से स्थानीय धार्मिक मान्यताओं एवं आदिवासी प्रथाओं का मिश्रण है। अनेक पारंपरिक जनजाति, स्थानीय एवं हिंदू धर्म के देवी देवता दंतेश्वरी देवी के मंदिर में एकत्रित होते हैं, जो कि पर्व का केंद्र बिंदु होता है। दंतेवाड़ा का फागुन मड़ई, सुकमा का रामाराम मेला और नारायणपुर मंडई बस्तर की कुछ रंगारंग गतिविधियों में से एक है। बस्तर की सदियों पुरानी परंपराएं साधारण एवं जटिल कलाकृतियों को चिन्हित करती हैं। इन कलाकृतियों को आकार देने वाले कारीगर प्राकृतिक संसार से प्रेरित होते हैं। बस्तर की सुंदरता कला की प्राचीनता एवं आधुनिकता के सम्मिश्रण में निहित हैं। कला पारखियों में बस्तर कला की लोकप्रियता बढ़ने के कारण इनमें हड़प्पा व सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव है। कोंडागांव, नारायणपुर एवं जगदलपुर टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे घंटियों से सजे हुए हाथी, सजावटी बर्तन एवं मेज पर रखी जाने वाली आकर्षक वस्तुएं। जगदलपुर कोसा सिल्क बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। बेल मेटल एवं रॉ आयरन की कारीगरी कोंडागांव और जगदलपुर की विशेषता है। लकड़ी एवं बांस का सर्वश्रेष्ठ कार्य नारायणपुर और जगदलपुर में देखा जा सकता है। बस्तर की सबसे पुरानी हस्तकलाओं में स्मृति चिन्ह के रूप

0: बस्तर में लगभग 300 हैं। यहाँ पर आदिवासी जंगल में एकत्रित की गई वस्तुओं के स्थान पर नमक, तंबाकू, कपड़े एवं अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुएं खरीदते हैं। बस्तर कलाकृतियों के कुछ उत्कृष्ट नमूने भारत के 5 सितारा होटलों की लाबियों एवं बड़े शहरों के उच्च वर्गीय शोरूम में स्थान प्राप्त है। बस्तर के कुछ प्रतिभावान कारीगरों को फेस्टिवल ऑफ इंडिया सीरीज जैसे प्रतिष्ठित समारोहों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। धान के विस्तृत खेत, पगडंडीहीन वनों के मनोरम दृश्य, पशु पक्षियों के अद्भुत प्रजातियां, नदियां, झरने एवं प्राचीन गुफाएं बस्तर को प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग बनाती हैं और साथ ही छुट्टियां मनाने के लिए इस ग्रह के सबसे अधिक जैविक विविधता वाले पर्यावरण यात्रा का विकल्प प्रस्तुत करती हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा बस्तर। इसमें आप सुन रहे थे आदिम जनजातियों का गढ़ बस्तर विषय पर वार्ता। वार्ताकार थी आशा रानी पटनायक। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हल्बी समाचार बुलेटिन।

ये आकाशवाणी जगदलपुर आए हल्बी समाचार बुलेटिन संगे मैं माधुरी यादव। आज चो मूर खबर, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 1 जुलाई ले देश भर ने लागू होली से। ये भीतरे छत्तीसगढ़ ने मजदूरी दर ने 13% चो बाढ़ती होली से। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग बाटले तय कर लो बिजली चोनुआ दर 1 जुलाई ले लागू होली से। राज्य सरकार खंड अरुकम वर्षा के दखून किसान मन के धान के रोपा लगा तो पलटा सीधा हिसाब ले बुनतो काजे गुहार करला से। और प्रदेश ने सहायक प्राध्यापक मंचो 700 खाली पद ने झपके भर्ती करतो होए दे। एबर खबर सरसराले, विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना जी राम जी छत्तीसगढ़ संगे देश भर ने 1 जुलाई ले लागू होली से। ये योजना भीतरे हर गांवकारी परिवार के साल ने 125 दिन चो काम काजे रोजगार गारंटी दिए जाए थे। ये अधिनियम हिसाब ले संशोधित भूति चो दर बल्ले 1 जुलाई ले लागू होली से। छत्तीसगढ़ ग्रामीण भूतियार मंचो भूति के 261 रुपया ले बढ़ान 300 रुपया प्रतिदिन किए गेली से। असन हिसाब ले भूति ने 13% चो बाढ़ती होली से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान गेलो 2 जुलाई के आंध्र प्रदेश चो तिरुपति ले ये योजना के मूर करला। ये मौका ने श्री चौहान सांगला कि ये अधिनियम देश ने रोजगार के तय करतो संगे गांव कारी मंचो आर्थिक स्थिति के पक्की करतो रहे। हुन सांगला कि ये योजना चो उद्देश्य सफाई के काम दे तो बले आए। योजना चो मूर करतो बेरा छत्तीसगढ़ चो कबीरधाम जिला चो गंडई खुर्द ग्राम पंचायत ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम चो आयोजन होली। कार्यक्रम ने उप मुख्यमंत्री अरु पंचायत अरु ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि चो रूप ने शामिल होला। ए मौका ने श्री शर्मा बल्ला कि ये योजना सोझे रोजगार दे तो योजना नो आए बल्कि ये गाँव चो विकास करून देश के विकसित भारत बनातोर अभियान आए। हुन बल्ला कि केंद्र सरकार ये योजना भीतरे छत्तीसगढ़ का जे 3,300 करोड़ रुपया चो प्रावधान कर ली से। श्री शर्मा सांगला कि ये योजना भीतरे 318 प्रकार चो काम मन आसे। विकसित भारत जी राम जी योजना चो मूर करतो मौका ने बस्तर संभाग संगे प्रदेश चो कैक जिला मन ने बले कार्यक्रम मन आयोजित होली। कोंडागांव जिला ने होलो कार्यक्रम ने जनप्रतिनिधि अरु अधिकारी कर्मचारी मन ग्रामीण अधोसंरचना के पक्की करतोर आजीविका संवर्धन पानी बचातो संगे विकसित ग्राम पंचायत मन के बनातो संकल्प धरला। कार्यक्रम के संबोधित करते नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल बल्ला कि ये योजना बाटले गांवकारी मन के आगर काम मिरे दे अरु संगे संग भूति दे तो अरु काम कसन हो से हुन गोट सफा सफा दखा दे दे। हुताए सुकमा जिला पंचायत कार्यालय ने होलो कार्यक्रम ने जन प्रतिनिधि मन संगे स्व सहायता समूह चो मेहरार अरु गांव कारी मन भाग धरला। कार्यक्रम ने जिला पंचायत चो मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकुंद ठाकुर विकसित भारत जी राम जी योजना चो जानकारी देते सांगला कि ये योजना भीतरे हर भूतियार कामगार मन के रोज चो भूति 300 रुपया दिए जाए दे। हुन सांगला कि ये योजना भीतरे रोजगार देतो संगे

संग कौशल विकास, आर्थिक सहायता और आजीविका हिसाब से दूसर काम के बले बढ़ावा मिले दे। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग बाटले तय कर लो बिजली चो नुआ दर 1 जुलाई ले लागू होली से। एबर लोग मन के प्रति यूनिट 30 ले 50 पैसा आगर देव पड़े दे। गैर घरेलू उपभोक्ता मन के बिजली बिल ने 20 पैसा ले 40 पैसा प्रति यूनिट आगर देव पड़े दे। हुताए कृषि पंप चो दर 40 पैसा महंग होली से। यथा बिजली बिल चो आगे भुगतान कर लो ने 1.25% चो छूट के घटान 0.25

अल्प वर्षा बलों ने कम वर्षा पानी के दखून किसान मन के धान चो रोबा लगा तो पलटा सीधा बीजा ले बुनाई कर तो बलों ने DSR तकनीक के अपनातो काजे गुहार कर लिसे सरकार बाट ले सांगलो हिसाब ने DSR तकनीक ले अंताजन 20% पानी चो बचत हो से असन ने एक एकड़ ने अंताजन 5,000 रुपया बाचे से अरु फसल 15 दिन आगे तैयार हो से सरकार बाटले धान संगे राहेर मूंग उड़ीद मूंगफली तिल राम तिल अरु सोयाबीन असन दार अरु तेल बीती फसल चो कमानी करतो सलाय बले दिलोर आसे राज्य सरकार सहकारी समिति चो माध्यम ले किसान मन के देतो यूरिया उपरे लागतो 80% चो सीमा के खत्म कर ली से एबर किसान मन के गेलो खरीफ बरस असन पात्र ता हिसाब ले एके संग यूरिया दिए जाए दे कृषि विभाग चो अधिकारी मन सांगला कि सहकारी समिति ने बराबर स्टॉक उपलब्ध निरलो ने किस्त ने ये दिए जाए दे यही मंझी दुनिया ने चलतो परिस्थिति चो प्रभाव रासायनिक उर्वरक उपरे बले पड़ली से यही लागून देश ने नैनो यूरिया अरु नैनो DAP चो उपयोग के बढ़ातो उपरे जोर दिए जाए से प्रदेश ने मानसून चो सक्रिय होतो संगे खेती कमानी चो काम ने बाढ़ती इली से ए समय तक अंताजन 6,25,000 हेक्टेयर क्षेत्र ने बुनाई पूरा होली से ये तय लक्ष्य ले 13% आगर आसे ये खरीफ समय ने राज्य ने 48,69,000 हेक्टेयर क्षेत्र ने बुनाई चो लक्ष्य राखलोर आसे मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय खेतिहार मन के मांग हिसाब ले खत अरु प्रमाणित बीज देतो निर्देश दिला से संघ ने खत और बीज बांटतो काम ने लापरवाही होलो ने कार्रवाई करतो काजे बल्ला से कृषि विभाग बांटले दिलो जानकारी हिसाब ले ए समय तक खेतिहार मन के 7,28,000 मीट्रिक टन उर्वरक अरु 3,00,000 क्विंटल ले आगर प्रमाणित बीज दिए गेली से कृषि मंत्री राम विचार नेताम गेलो 2 जुलाई के बीजापुर जिला कार्यालय ने बीजापुर दंतेवाड़ा सुकमा जिला ने चलतो विभागीय योजना मंचो समीक्षा करला ये मौका ने हुन बल्ला कि किसान मंचो आय बढ़ातो संगे सरकारी योजना चो लाभ हर खेतिहार लगले अमरतोर जरूरी है कृषि मंत्री अधिकारी मन ले बल्ला कि सिंचाई सुविधा के बढ़ातो संगे बोरिंग अरु कुआं बनातो काम ने तेजी आनोत हुन दार बीती फसल तेल बीती फसल जोंधरा कोदो कुटकी हरदी अरु डांडा कमानी करतो उपरे जोर दिला श्री नेता दंतेवाड़ा जिला ने गेलो 7 बरस ले चलतो जैविक खेती मॉडल के दिगर क्षेत्र ने बले अपनातो का जे निर्देश दिला कृषि मंत्री राम विचार ने ताम आपलो बस्तर दौरा भीतरे 1 जुलाई के कांकेर ने होलो किसान संगोष्ठी ने शामिल होला ये मौका ने हुन किसान मन ले मिश्रा खेती के अपनातो काजे बल्ला श्री नेताम बल्ला कि किसान मन धान संगे दार अरु तेल बीती फसल चो कमानी करोत अरु बेड़ा चो पार ने मुनगा बूटा मंडात हुन कम लागत अरु कम पानी ने आगर उपज देतो बीती फसल के बढ़ातो काजे बले बल्ला श्री नेताम खेती कमानी संगे मछरी पोस्तो कुकड़ा कुकड़ी अरु गाय भैंस छेरी मेंढी असन पशुपालन चो काम के करतो काजे सलाय बले दिला कृषि मंत्री सांगला कि धान चो पलटा दिगर फसल धरतो किसान मन के राज्य सरकार 1 एकड़ पाछे 15,000 रुपया आदान सहायता दाय दे ए मौका ने किसान मन के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अनुपोषण मिशन संगे आत्मनिर्भरता दलहन तिलहन बीज के बले बांटला कृषि मंत्री राम विचार नेताम बीजापुर ने मछली पालन केंद्र चो निरीक्षण करून ए केंद्र के आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र चो रूप ने विकसित करतो निर्देश दिला हुन सांगला कि केंद्र ने अठाकठा चो किसान मन के मछली पोस्तो काम चो प्रशिक्षण देऊन हुन मन के रोजगार चो बाट दखत श्री नेताम ए केंद्र के जिला चो किसान मन काजे आधुनिक तकनीक बलो ने नुआ उवाट चो मॉडल केंद्र बनातो गोट उपरे जोर दिला महिला अरु बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े गेलो दिने 2 जुलाई के मंत्रालय ने विभागीय बस का धरला ये मौका ने हुन बल्ला कि दुरिया चो गांव मन ने योजना चो बारे ने सांगतो काजे हुता चो बोली भाखा ने बलून सांगतोर हो बस्तर क्षेत्र ने हल्बी अरु गोंडी बोली ने सांगतोर हो हुन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अरु पर्यवेक्षक चो खाली पद मन ने बस्तर संभाग काजे झपके भर्ती करतो भरसा दिला छत्तीसगढ़ भवन अरु दिगर निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल बाटले पंजीकृत भूतियार मन के श्रमिक कार्ड ने समय समय ने सत्यापन करातोर सलाह दिए गेली से अधिकारी मन सांगला कि श्रमिक कार्ड ने संशोधन करातो का जे 20 रुपया शुल्क देऊ पड़े दे संघ ने आधार कार्ड चो मूल प्रति अरु
सहमति पत्र संगे आवेदन देव पड़े दे।

श्रम विभाग पंजीकृत श्रमिक मन ले गुहार कर ली से कि समिया ने आप लोग श्रमिक कार्ड चो जानकारी के अपडेट करात। प्रदेश ने सहायक प्राध्यापक चो 700 खाली पद मन ने झप के भर्ती हो दे। उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा जो अध्यक्षता ने गेलो 1 जुलाई के मंत्रालय ने होलो समीक्षा बसका ने निर्देश दिए गेली कि 31 जुलाई तक स्नातक कॉलेज ने प्राचार्य मंचो पदोन्नति चो प्रक्रिया के पूरा करो। बसका ने सांगला कि ग्रामीण अरु आदिवासी क्षेत्र चो पड़तो पीला मन का जे महाविद्यालय ने अंग्रेजी संप्रेक्षण पाठ्यक्रम बले मूर होय दे। हुताय सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्नातकोत्तर स्तर तक लागू करतो विचार कर ली से। राज्य शासन चो स्कूल शिक्षा विभाग शासकीय अरुषत प्रतिशत अनुदान प्राप्त स्कूल ने काम करतो पात्र शिक्षक मन के बलों ने गुरुजी मन के शिक्षा सत्र 2026-2027 चो सरासरी तक पुनर्नियुक्ति देतो स्वीकृति जारी कर ली से। यथा सहायक शिक्षक ले धरून प्राचार्य तक आसोत। लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देश दिए गेली से कि सपाई जिला ने जरूरी कार्रवाई झपके झपके पूरा हो। छत्तीसगढ़ भवन अरु दूसर निर्माण कल्याण मंडल बाटले अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना भीतरे पंजीकृत निर्माण श्रमिक मंचो पिलामन काजे ऑनलाइन आवेदन चो आखरी तिथि बलों ने आखरी तारीख 3 जुलाई ले बढ़ान 12 जुलाई होली से। मन करलो लोग श्रम विभाग चो पोर्टल ने आवेदन करुक सकोत। एचे संगे श्रम कार्यालय लोक सेवा केंद्र अरु श्रमेव जयते एप चो माध्यम ले बले आवेदन करुक सकोत। बस्तर जिला चो बकावन विकास खंड चो जयतगिरी सर्गीपाल गिरोला डुरकाबेड़ा अरु बदलावन गांव ने जल अर्पण दिवस मनाई गेली। ए मौका ने गांव कारी मन जल संरक्षण अरु पानी बचाओ अभियान के सफल बनातो काजे काम करतो संकल्प धरला। कार्यक्रम ने जल जीवन मिशन चो IEEC ज्योत्सना सुना गांव कारी मन के पानी चो महत्व चो बारे ने जानकारी दिला। हुन पानी चो स्रोत चो अठाकठा साफ सफाई राखतो गुहार बले करला। सुकमा जिला चो आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र के राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र मिली से। ये स्वास्थ्य केंद्र ने प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी आपलो सेवा देसोत। यथा आधुनिक हिसाब चो बनलो जचकी खोली अरु जांच खोली आसे। ये समय तक जिला चो 17 ठान स्वास्थ्य केंद्र के ये प्रमाण पत्र मिली से। बरसा बेरा आकाशीय बिजली गिरतो संभावना आगर रहे से ये के दखून स्वास्थ्य विभाग लोग मन ले सावधानी अरु सुरक्षा उपाय चो पालन करतो गुहार कर ली से। स्वास्थ्य विभाग बाटले बल्लो रासे कि लहरा पानी खराब रहतो बेरा बादल गरजतो बेरा बिजली चमकतो दाए लोग मन खुला भाठा बेड़ा डोंगरी नदी नहाले रुख चो खाले असन ठान मन ने नीथेबुत। हुताए बिजली गरजतो चमकतो दाए नदी तरई ने उबा नी रहतो राय। संघ ने लोहा चो सज समान जसन नांगर फार राड तार नहाले और दूसर धातु चो तीज समान मन के धरून खुला ठान ने उबा रहतो नुआ। कांकेर जिला ने भानु प्रतापपुर चो बांदे परिक्षेत्र ने एंटी पोचिंग टीम महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा ने वन्य जीव तस्करी करतो बड़े नेटवर्क चो खुलासा कर ली से। ऑपरेशन सेफ पैसेज भीतरे उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो वन विभाग अरु पुलिस चो मिसलो कार्रवाई ने 2 ठान बाग खाल बलो ने डुरका चाम संगे 2 झान आरोपी मन के गिरफ्तार करलो रासे। जांच ने आरोपी मन लगले पेंगोलिन चो चाम बले जपत होली से। ये दोनों आरोपी पुलिस विभाग ले आत असन सांगतोर होय से। सरासरी ने मूर खबर एक हार फेर। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 1 जुलाई ले देश भर ने लागू होली से। ये भीतरे छत्तीसगढ़ ने मजदूरी दर ने 13% चो बढ़ती होली से। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग बाटले तय करलो बिजली चो नुआ दर 1 जुलाई ले लागू होली से। राज्य सरकार खंड अरु कम वर्षा के दखून किसान मन के धान के रोपा लगातो पलटा सीधा हिसाब ले बूंदो काजे गुहार करला से। और प्रदेश ने सहायक प्राध्यापक मंचो 700 खाली पद ने झपके भर्ती करतो होय दे। एचे संगे हल भी समाचार बुलेटिन चो ये अंक एथाए सरे से जुहार।

0: आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
5: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

और अब पेश है मधुरिमा। गगन के सुने आंगन में आज उमड़े काले बादल, बिजली की तलवार लिए करते हैं जैसे कोई हलचल। गरज गरज कर अंबर सारा आज कपा देता है, धरती के सूखे होठों पर मुस्कान नई ला देता है।

छू कर निकल जाती है जब बारिश की फुहार, छू कर निकल जाती है जब बारिश की फुहार, बदल जाता है जैसे मौसम का सारा संसार। मिट्टी की वो सौंधी खुशबू, भीगा हुआ मन, हर पल को बनाती है ये और भी खुशनुमा।

ये रिमझिम सी फुहार, सूखे पत्तों को भी देती है ये जीवन का नया उपहार। मिट्टी भी महक उठी है सुनकर इसकी मीठी आवाज, बादल ने आज फिर छेड़ा है खुशियों का कोई नया साज। तन भी भीगा मन भी भीगा और भीगी है ये बहार, कितनी हसीन है ये सुबह और बरसती हुई ये फुहार।

अब फूल और कांटे और थोड़ी सी बेवफाई के इन मधुर गीतों के साथ ही नमस्कार जगदलपुर के इस अंक से रूपाली थोड़ी सी बेवफाई के इन मधुर गीतों के साथ ही नमस्कार जगदलपुर के इस अंक से रूपाली

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के

0: एक्सपर्टों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
1: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
2: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत

0: भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन की कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे निस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मुबूर कॉलेज नगा
1: चिंता की माँ
0: फीस तिनूड़ा
2: हे हे बाले मिंदेन बाड़ता
3: हाँ
1: फीस ताल जे
3: राहुल ना बैंक का दाकोन मिंदे अर नल्ला बैंक तीना जरूरत हिसाब से पेकोर पोड़े मायला कर्जा उबाय दौर किता अद्वैत नालो लाख रुपया तिप्पा लाईवा अद्वैत मिंदे
0: आई
2: मिठाई
4: और भी एक तीता
5: क्यों नल्ला ता मोर लेन देन ती मनुष्य चतुर
6: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं विभिन्न बोलियों में लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। आइए अब सुनते हैं हल्बी लोकगीत। गायक कलाकार है योगेश्वर पुजारी और साथी।

अभी आप सुन रहे थे बुधराम कश्यप और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। आइए एक और हल्बी लोकगीत सुनते हैं सहदेव कश्यप और साथियों के स्वर में।

सहदेव कश्यप और साथियों के स्वर में गाए इस हल्बी लोकगीत के साथ ही विभिन्न बोलियों में लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए बच्चों का कार्यक्रम बालबाड़ी।

0: बालवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं प्रतीक्षा नैन्सी विकास नमस्कार करती हूँ। साथ ही प्यारे प्यारे बच्चों को अपना ढेर सारा प्यार देती हूँ। आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: बच्चों, गर्मी खत्म होने पर है और बारिश का मौसम शुरू हो चुका है ना? तो किस किस बच्चे को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है?
1: मुझे
0: आपको है ना, क्यों अच्छा लगता है बेटा?
1: इस टाइम बहुत ही ज्यादा बारिश होती है तो वेदर बहुत अच्छा हो जाता है और पेड़ वेड़ एकदम ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं और हवा बहुत साफ हो जाता है।
0: अच्छा, इस वजह से है ना। अभी हाल ही में आप लोगों ने गर्मी का मौसम देखा, तो गर्मी के मौसम में हमको पानी की परेशानी होती है कि नहीं?
1: जी
0: है ना, कहीं कहीं पर अच्छे से पानी नहीं आता है ना, पूरा माहौल वातावरण सूखा सूखा सा लगता है कि नहीं? और बारिश जैसे ही आता है, सब तरफ क्या होता है, हरियाली आ जाती है ना, सब तरफ हरा भरा दिखने लगता है। तो बारिश का मौसम हमारे लिए क्या लेके आता है? हरियाली लेकर के आता है। अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? और हरियाली तो नहीं होगी, साथ
1: सूखा
0: ही
1: पड़ जाएगा।
0: सूखा पड़ जाएगा। और मान के चलो कि बारिश के मौसम में बारिश नहीं हुआ, साथ ही कभी कभी बीच बीच में गर्मी के दिनों में भी बारिश हो जाती है, ठंडी के दिनों में भी बारिश हो जाती है, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? कल्पना करो आप कि बारिश के मौसम में बारिश ही नहीं हुई, कभी ठंडी में जो बारिश होती है वो भी नहीं हुई, गर्मी में जो बारिश होती है वो भी नहीं हुई, तो क्या होगा? अकाल पड़ जाएगा, है ना? क्यों बारिश का मौसम हमारे लिए इतना जरूरी है? क्योंकि बारिश क्या है, हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब बारिश होती है तो धरती भी अंदर से पानी को सोखती है ना? और जब हम कभी भी हम बोर कराते हैं तो आप देखना सब क्या बोलते हैं, गर्मी में कराओ। क्यों? क्योंकि सूखा सूखा रहेगा पानी का जो स्रोत है, वो जितना नीचे से मिलेगा हमारे लिए उतना अच्छा होगा। लेकिन वही चीज हम बारिश में क्यों नहीं कराते? क्योंकि पानी का लेवल ऊपर ऊपर रहता है ना? तो बारिश हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। जहां कहीं भी बारिश नहीं होती है, वो क्या करते हैं, बारिश के पानी का इंतजार करते हैं, बारिश का इंतजार करते हैं, है ना? और वो बड़े बड़े टैंकरों में ऐसे गड्ढे खोदकर, तालाब खोदकर कुछ ऐसा स्रोत बनाते हैं और उस बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं, ताकि बारिश का पानी उनके खेतों को सींच सके या उनके घर के सामान्य कामों को वो कर सके, है ना? हमारे तरफ बहुत अच्छे से बारिश होती है, अच्छे से पानी का जरिया है, तो हमको पानी

0: की उतनी समस्या नहीं होती तो हम पानी के महत्व को नहीं समझ पाते, लेकिन उस जगह देखो जहां पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या होती है। अभी हाल ही में मैंने सुना कि बैंगलोर में सबको गाड़ी धोने के लिए, साइकिल धोने के लिए या पानी का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया गया है। बहुत कम रूप से आप थोड़ा सा लो उसी में करो। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है ना? तो हम पानी के महत्व को तब समझेंगे जब हमारे ऊपर ये संकट आएगा, है कि नहीं? बिना संकट के कोई समझ सकता है? नहीं। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर ये जल संकट आए? कौन कौन चाहता है कि उनके ऊपर जल संकट आए? कोई भी नहीं। तो हमको इस दिन से बचने के लिए क्या करना चाहिए?
1: पानी बचाना चाहिए।
0: पानी बचाना चाहिए, पानी के महत्व को समझना चाहिए। और पानी कैसे बचाना चाहिए?
1: छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हो, जैसे
0: जैसे
1: पानी को वेस्ट नहीं करना है, नल को
0: हाँ
1: बंद करना है और वाटर को फेंकना नहीं है, पीने वाला पानी को, और किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं करना है। बस
0: किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं करना है। लेकिन हम कैसे वेस्ट करते हैं?
2: नल को खुला छोड़
0: नल को खुला छोड़ देते हैं, है ना? दूसरा और क्या, जब हम ब्रश करने जाते हैं तो पानी बहता रहता है और हम ब्रश करते रहते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? नहाने के समय आसानी से एक बाल्टी में हमारा काम हो सकता है, हम क्या करते हैं 3 से 4 बाल्टी जबरदस्ती का फेंक फेंक के यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या नहीं है तो हमको पानी का महत्व नहीं मालूम, है ना? लेकिन वही चीज अगर हम इसके महत्व को समझे, जल को बचाएं, है ना, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे, पानी को जबरदस्ती फेंक फेंक के इस्तेमाल करने की जगह उसके महत्व को समझे, है ना? घर में अगर हम पोछा लगा रहे हैं, अब वो पानी बच गया तो हम उसको बाहर अपने आंगन को धो सकते हैं। इसके अलावा ब्रश करते समय भी हम ध्यान दे, है ना? हम सब्जी वगैरह धोते हैं घर में, मम्मी कोई भी, तो वो जो पानी बचता है उसको ऐसे ही ना फेंके, क्या करे, उसको जा करके गमले में पौधों को पानी दे, है ना? ऐसे छोटी छोटी बातों को हमको ध्यान देना है और जल को बचाना है। और एक बात, सिर्फ हमको ऐसा नहीं करना है, हमको अपने आसपास के लोगों को भी सिखाना है। जब हम कहीं जाते रहते हैं, आप स्कूल ही जाते रहते हो, ट्यूशन जाते रहते हो, कहीं भी आप देखते होगे रास्ते में कितना नल ऐसे खुला हुआ मिलेगा, पानी अपने आप वहां बह रहा है, आप चुपचाप देख के चले जाते हो। आपके स्कूल में भी होगा नल, बच्चे खोलते हैं उसके बाद बंद करना भूल जाते हैं, वो खुला रहता है। हम क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, वो खुला है वही बंद करेगा, या स्कूल में जो दीदी भैया लोग हैं वो करेंगे। हमको ऐसे नहीं करना है ना? अगर हम एक छोटा सा काम कर दे तो क्या हम छोटे हो जाएंगे? नहीं, हमको रास्ते में जहां भी दिखे कि टैप खुला हुआ है, नल खुला हुआ है, पानी बेवजह बह रहा है, तो हमको तुरंत उसको बंद करना है ना? तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान दोगे तो देखना आप अपने देश को, अपने शहर को, अपने आप को भी बचा लोगे, क्योंकि जल ही क्या है,
1: जीवन है।
0: जीवन है। तो चलो इसी बात की खुशी में कि आप लोग समझ गए पानी के महत्व को, सब एक दूसरे के लिए जोर से ताली बजाएंगे। तो अब हम चलते हैं इसके बाद सामुदायिक गीत की ओर, है ना? तो हर बार की भांति इस बार भी मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सामुदायिक गीत लेकर के आई हूँ, जो कि उड़िया भाषा में है और इसके बोल हैं केऊ ब्यामा धारी और इसके रचनाकार हैं केसी पानीग्राही जी। तो चलो सुनते हैं उड़िया भाषा का यह सामुदायिक गीत।

0: इस सुंदर से सामुदायिक गीत के बाद अब मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों की ओर आती हूँ। तो सबसे पहले बेटा आप अपना नाम बताओ।
1: अजय सिंह।
0: अजय, अजय आप क्या सुनाओगे?
1: कविता
0: कविता। आपकी कविता का शीर्षक क्या है?
1: हवा।
0: हवा। चलो बेटा सुनाओ।
1: ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साए साए, मुन्नी को छेड़कर चढ़ गए पेड़ पर। हाथ नहीं आऊंगी दूर में उड़ जाऊंगी, मुन्नी बोली हंस कर हवा रानी बस कर।
0: बहुत ही सुंदर छोटी सी प्यारी सी कविता अजय के लिए। इस कविता के लिए सब जोर से ताली बजाएंगे। अजय के बाद अब कौन है? बेटा आप अपना नाम बताओ।
1: विवेक।
0: विवेक। विवेक आप क्या सुनाओगे?
1: कहानी और कविता।
0: कहानी और कविता। तो बेटा सबसे पहले क्या सुनाओगे आप?
1: कहानी
0: कहानी। आपकी कहानी का शीर्षक क्या है?
1: शेर और चूहा।
0: शेर और चूहा। चलो बेटा सुना।
1: गर्मी का दिन था और एक शेर गुफा में झपकी ले रहा था। अचानक से एक चूहा गलती से उसकी नाक पर चढ़ गया और खतरनाक जानवर जाग गया। शेर को बहुत गुस्सा आया और शेर अपने पंजे के नीचे चूहे को कुचलने ही वाला था कि नन्हा चूहा अपनी जान की भीख मांगने लगा। शेर ने उसे जाने दिया। कुछ दिन बाद में भटकते हुए शिकारी के जाल में फंस गया और जाल में फंस गया वह रस्सियों में इस कदर उलझ गया कि हिलडुल भी नहीं पा रहा था। शेर जमीन पर लेट गया और बेबस होकर धाड़ने लगा। उसकी पुकार पूरे जंगल में गूंज उठी, चूहे के कानों में पहुंच गई। वह दौड़कर मौके पर पहुंचा और जाल को काटने लगा और टुकड़ों में काट दिया। इस प्रकार शेर की जान बच गई। शिक्षा, हर चीज की अपनी कीमत होती है।
0: क्या शिक्षा मिलती है? हर चीज की अपनी एक कीमत होती है ना? किसी को भी अपने से कमतर या अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। समझना चाहिए। अगर शेर उस चूहे को अपने से कमतर समझता तो वो क्या होता?
1: वो फंसा रह जाता।
0: फंसा रह जाता है ना। और

0: चूहा अगर घमंड करता या चूहा ये करता मैं इसको नहीं बचाऊंगा, तो क्या शेर बच पाता?
1: नहीं।
0: नहीं बच पाता, है ना। तो कभी भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए और कभी भी किसी को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। तो सभी विवेक के लिए जोर से ताली बजाएंगे। बेटा आप अपना नाम बताओ।
2: अंशिका।
0: अंशिका। अंशिका आप क्या सुना रही हो?
2: कविता।
0: कहानी और कविता। पहले क्या सुनाओगी बेटा?
2: कहानी।
0: कहानी। आपकी कहानी का शीर्षक क्या है?
2: सच्ची मित्रता।
0: सच्ची मित्रता। थोड़ा जोर से सुनाना, ठीक है?
2: यह एक कश्मीरी लोक कथा है। एक राजा और उसका मंत्री बहुत अच्छे मित्र थे। वे हमेशा साथ रहते थे। उनकी तरह उनके बेटे भी एक साथ बड़े हुए और बहुत करीबी दोस्त बने। एक दिन दोनों शिकार पर गए। रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगी और वे थक गए, इसलिए उन्होंने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। मंत्री का बेटा पानी की तलाश में गहरे जल में चला गया। एक झरने के पास पहुंचकर उसने एक सुंदर परी को देखा, लेकिन परी के पास एक शेर बैठा था। उसने धीरे से झील से कुछ पानी निकाला और अपने दोस्त के पास वापस लौट आया। उसने राजा के बेटे को घटना सुनाई और उसे झरने के पास ले गया। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि शेर परी के गोद में सो रहा था। उन्होंने परी को महल में ले जाने

0: बड़ा सबक देती है कि हमें अपने दोस्तों का चयन बहुत ध्यान से करना चाहिए।
1: बहुत ही सुंदर कहानी। हमें अपने दोस्तों का चयन बहुत ही ध्यान से करनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है? नजर हटी,
2: ना घटी,
1: जोर से बोलो,
2: दुर्घटना घटी।
1: दुर्घटना घटी। और कैसी दुर्घटना घटती है? हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हमारी पहचान वैसे ही बनती है ना? अगर हमारे दोस्त बहुत अच्छे हैं तो लोग हमको भी बहुत अच्छा सोचते हैं, और अगर हमारे दोस्त अच्छे नहीं है तो लोग सोचते हैं हम भी वैसे ही है ना? कभी भी हमको जो अगर कोई गलत कर रहा है तो हमको उसके जैसा नहीं बनना है। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमको सामने वाले को अपने जैसा बनाना है, और देखना है कि अगर उसमें सुधार नहीं हो रहा है तो धीरे से हमको अपना रास्ता बदल लेना है ना? माँ बाप ऐसे ही तो नहीं बोलते, बेटा इसके साथ रहो, इसके साथ मत रहो, कुछ देख के ही उनको मालूम है कि हमारे बच्चों के लिए कैसे लोग सही होंगे। तो ध्यान रखना, कभी भी दोस्ती सही लोगों से करना जो आपको सही रास्ता दिखाए, और अगर आपकी गलती से भी ऐसे लोगों से दोस्ती हो जाती है जो कि बिगड़े हुए हैं, तो कोशिश करना कि वो सही रास्ते पे आए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप धीरे से अपना रास्ता बदल लेना। तो सारे बच्चे अंशिका के लिए ताली बजाएंगे इस सुंदर सी कहानी के बाद। अंशिका बेटा हमारे लिए एक कविता भी लाई है। बेटा आपकी कविता का शीर्षक क्या है?
0: चार चने।
1: चार चने। ठीक है बेटा सुनाओ।
0: पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते। तोते को खिलाते तो टाए टाए गाता, टाए टाए गाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते। घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बैठाता, पीठ पर बैठाता तो बड़ा मजा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते। चूहे को खिलाते तो डाँट टूट जाता, डाँट टूट जाता तो बड़ा मजा आता।
1: पहले किसको खिलाते? चना, तोते को, है ना? चना खा के तोता कैसे बोलता? टाए टाए। दूसरा चना किसको खिलाते? घोड़े को। घोड़ा चना खा के हमको पीठ में घुमा के सैर कराता। तीसरा चना किसे? चूहे को। कि चूहा चना खा के क्या करता? चूहे का दांत टूट जाता तो वो कोई भी चीज को काट नहीं पाता। और चौथा चना, चौथे का तो आप बता ही नहीं, चौथा चना अंशिका खुद खा जाती है ना? सही है कि नहीं? चलो सब बच्चे हंस रहे हैं। अंशिका के लिए फिर से जोरदार ताली, चार चने के लिए। अंशिका के बाद अब है, बेटा आप अपना नाम बताओ।
2: प्राशु।
1: प्राशु। प्राशु आप क्या सुनाओगे?
2: कहानी,
1: कहानी और
2: एक कविता।
1: एक कविता। तो पहले क्या सुनाओगे आप?
2: कहानी,
1: कहानी। बेटा आपकी कहानी का शीर्षक क्या है?
2: दो चूहे।
1: दो चूहे। चलो बेटा सुनाओ।
2: खेत में चुन्नू चूहा मेज से अनाज खा रहा था। उसने एक चूहे को अपनी ओर आते देखा। पास आने पर चुन्नू ने पूछा, भाई तुम कहाँ से हो और कहाँ रहते हो? चुन्नू ने कहा, मेरा नाम मुन्नू है, मैं शहर से यहाँ घूमने आया हूँ। चुन्नू ने कहा, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। चुन्नू मुन्नू ने एक साथ कई दिन बिताए। फिर एक दिन मुन्नू शहर लौट गया। कुछ दिनों बाद चुन्नू को शहर देखने और मुन्नू से मिलने की इच्छा हुई। वह एक दिन शहर पहुंच गया। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ढेर सारी बातें की। फिर भोजन का समय हुआ। मुन्नू घर में बने एक बिल में रहता था। उसने चुन्नू से कहा, बाहर निकलो मित्र और मेज के नीचे जाओ, भोजन गिरा है, उसका आनंद लो। यह गांव के भोजन से बहुत अधिक स्वादिष्ट है। दोनों बिल से निकलकर भोजन करने लगे। घर में मौजूद बिल्ली ने उन्हें देखा तो खाने के लिए दौड़ी। उसे देख मुन्नू चिल्लाया। चुन्नू तुरंत बिल में लौटा। बिल्ली आ रही है। चुन्नू लड़खड़ाते हुए बिल में पहुंचा। वह बहुत डर गया। थोड़ी देर बाद दोनों घूमने निकले। घर से बाहर निकलते ही दर

0: पर खड़े कुत्ते ने उन्हें दौड़ा लिया। दोनों फिर दौड़कर बिल में घुस गए। चुन्नू ने मुन्नू से कहा, मित्र, गांव में भले ही इतने स्वादिष्ट भोजन ना हो, फिर भी वहां पे मेरी जान को कोई खतरा नहीं। मुझे अपना घर लौटने की इच्छा हो रही है, मुझे आज्ञा दो। चुन्नू यह कहकर अपने गांव लौट गया।
1: इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है?
0: शांति का साधारण जीवन खतरे से भरे जीवन से बहुत अधिक अच्छा होता है।
1: शांति का साधारण जीवन खतरे से भरे जीवन से बहुत अच्छा होता है ना? समझ में आ गया उस चूहे को कि अगर मैं शहर में रहा तो मेरी मौत निश्चित है ना? अगर मुझे साधारण जीवन जीना है और अच्छे से जीवन जीना है खुशियों के साथ, तो मैं कहाँ जी सकता हूँ? गांव में, क्योंकि वहाँ मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो हमको भी ऐसे ही है ना, कभी भी खुशियों के पीछे नहीं दौड़ना है, और वो खुशियाँ जो हमारे लिए हानिकारक हो, बल्कि जिससे हमारा भला हो, जिससे हमारे परिवार का भला हो, चाहे वो साधारण ही क्यों ना हो, हमेशा हमको उन बातों की ओर ध्यान लगाना है। प्राशु ने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। प्राशु की सुंदर सी कहानी के लिए हम सभी जोरदार ताली बजाएंगे। सुंदर सी कहानी के बाद प्राशु की ओर चलते हैं वापस, ताकि वो हमें एक कविता भी सुनाए। बेटा, आपकी कविता का शीर्षक क्या है?
0: पेड़ लगाओ ऐसा,
1: पेड़ लगाओ ऐसा। चलो बेटा सुनाओ।
0: पेड़ लगाओ ऐसा जो हो जादू के जैसा, बिस्कुट के पत्ते हो जिसमें फल हो टॉफी जैसा, आइसक्रीम का रस हो जिसमें गोंद हो चुंबक जैसा, दही मक्खन बर्फी बन जाए, दूध बहे कुछ ऐसा, डाल पकड़ कर अगर हिलाए टप टप बरसे पैसा, पेड़ लगाओ ऐसा जो हो जादू के जैसा।
1: बहुत ही सुंदर। पेड़ लगाओ ऐसा जो हो जादू के जैसा। अभी मैं आपको शुरुआत में ही बताई थी ना, जल ही जीवन है। आपको पता है बारिश को कौन आकर्षित करता है? पेड़। हम जितना पेड़ लगाएंगे उतनी ही ज्यादा बारिश होगी। अगर हम पेड़ों की कटाई कर दे तो बारिश भी नहीं होगी, है ना? क्योंकि पेड़ हमेशा बारिश को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो पेड़ों के महत्व को समझना है, क्योंकि पेड़ ही हमारे लिए क्या है, बारिश को लाते हैं। इसीलिए तो पेड़ वन महोत्सव मनाया जाता है ना। अभी अभी वन महोत्सव होने वाला है आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि उसका अपना एक महत्व होता है। जल ही जीवन है, और ये जल हमारे हम ये जल हमारे जीवन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल के बिना जीवन असंभव है। और ये जल हमें तब प्राप्त होगा जब हम पेड़ों को लगाएंगे। ठीक है, तो प्राशु के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। सुंदर सी कहानी, सुंदर सी कविताएं, इन सब के बाद अब समय है मेरा कि मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा आपकी पसंद का फिल्मी गीत सुनाऊं। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का एक बहुत ही प्यारा सा फिल्मी गीत।

0: इस सुंदर से फिल्मी गीत के साथ ही हमारा आज का यह बालवाड़ी कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। इस वादे के साथ कि अगले रविवार ठीक सुबह 9 बजे इसी बालवाड़ी कार्यक्रम में हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।
1: जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम बालवाड़ी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अभिनेत्री के कुछ गीत।

सन 1970 में बनी हिंदी फिल्म अभिनेत्री, जिसका निर्माण और निर्देशन सुबोध मुखर्जी ने किया था। फिल्म में शशि कपूर, हेमा मालिनी, निरूपा रॉय, नाजिमा आसिद सेन और देव मुखर्जी मुख्य भूमिका में थे।

1970 में बनी फिल्म अभिनेत्री के मधुर गीतों को लिखा था लक्ष्मीकांत देव मुखर्जी ने और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और फिल्म अभिनेत्री के गीतों को अपनी मधुर आवाजें दी थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर महेंद्र कपूर ने।

सन 1970 में बनी फिल्म अभिनेत्री की कहानी को लिखा था समीर गांगुली, डीएन मुखर्जी, सुभाष मुखर्जी, सुबोध मुखर्जी और एहसान रिजवी ने।

फिल्म अभिनेत्री के गीतों को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और अपनी मधुर आवाजें दी थी किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से संपन्न होता है। इसमें आज आप सुन रहे थे फिल्म अभिनेत्री के कुछ गीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:00
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। मशहूर पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन। रायपुर में चल रहे चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने आज सुबह योगाभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रही थी। उनका इलाज रायपुर के एम्स में चल रहा था। उन्होंने आज तड़के करीब 3:15 बजे अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर दुख जताते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णिक क्षति है। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधायक पुरंदर मिश्रा समेत कला जगत से जुड़े लोग और अनेक गणमान्य नागरिक एम्स पहुंचे और तीजन बाई के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तीजन बाई का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीजन बाई का

0: न केवल लोक कला जगत के लिए बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ तथा समस्त देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक अपूर्णिय क्षति है। अपनी अद्वितीय गायन शैली, विलक्षण प्रतिभा और लोक परंपराओं के संरक्षण के माध्यम से उन्होंने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया। उनका अतुलनीय योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। गौरतलब है कि तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक एक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया। भारतीय लोक कला में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। छत्तीसगढ़ में सुशासन और अभिसरण विभाग और आईआईएम रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन आज सुबह मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान के परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इस शिविर का कल शुभारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिविर का उद्देश्य शासन प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितैषी बनाना है। उन्होंने कहा कि पिछले चिंतन शिविरों के सुझावों के आधार पर ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसी पहले शुरू की गई। शिविर में सुशासन, उभरती तकनीकों, कृषि समृद्धि, प्राकृतिक खेती और नेतृत्व विकास जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। इस शिविर में मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल हो रहे हैं। इस चिंतन शिविर का आज समापन होगा। मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय उत्तर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। आज सुबह से ही राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की खबर है। बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत भाड़म में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतकों में एक महिला और उसके दो पुत्र शामिल हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। रेलवे पुलिस के अनुसार व्यक्ति मालगाड़ी के नीचे से रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहा था। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जीआरपी ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मशहूर पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन। रायपुर में चल रहे चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने आज सुबह योगाभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के जे हैं।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
2: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलशन, इसमें आज सुनिए नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म द फैमिली स्टार से, गीत रश्मि विराग

अभी आप सुन रहे थे तेजस फिल्म का गीत। स्वर दिया था ए हरिहरन और शाश्वत सचदेव ने, बोल कुमार के थे। संगीत दिया था शाश्वत सचदेव ने। आइए अब सुनते हैं सूबेदार फिल्म का गीत। स्वर आईपी सिंह का है और श्रेया घोषाल का। गीत रचना आईपी सिंह का है, संगीत दिया है अक्षय और आईपी सिंह ने।

आइए अब सुनते हैं सचित टंडन और परंपरा टंडन के स्वर में बैरागी फिल्म का गीत। गीत और संगीत सचित और परंपरा का है।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गुलशन संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे नए तराने। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स, और आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं।

0: लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत। प्रस्तुति मनिंदर सिंह देवगुण की है, संयोजक है चंद्र ऋषि ठाकुर।
1: श्रोताओं, आपकी और हमारी बातचीत सिर्फ शब्दों का सिलसिला नहीं होती बल्कि दिलों को जोड़ने वाला एक खूबसूरत एहसास भी होता है। जब आप हमसे जुड़ते हैं, अपनी पुरानी यादों की पोटली खोलते हैं, मौसम की खुशबू को शब्दों में पिरोते हैं, अपनी उपलब्धियों की खुशी बांटते हैं और अपने मन की बातें हमारे साथ साझा करते हैं, तब ये कार्यक्रम सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं रहता बल्कि एक बड़े परिवार की आत्मीय महफिल बन जाता है। तो आइए, आपके फोन, आपकी बातें और आपकी पसंद के गीत हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं हूं मनिंदर सिंह देवगुण और आप सुन रहे हैं फोन इन चाहत। तो आइए सिलसिला शुरू करते हैं आज के पहले कॉल के साथ। हेलो, फोन इन चाहत।
2: हेलो।
1: हाँ, फोन इन चाहत से बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं हिमराज भारद्वाज, फरसगांव से बोल रहा हूँ, मनिंदर सर मैं। नमस्कार।
1: अरे वाह, क्या बात है, आप पहचान गए हमको।
2: जी सर, आप पहचान गए।
1: और बहुत बहुत स्वागत है आपका, आज चाहत कार्यक्रम का पहला कॉल आप ही का है। कार्यक्रम की शुरुआत आपकी आवाज से हो रही है, बताइए आप क्या कर रहे हैं इस वक्त?
2: हम लोग ऐसे बिल्डिंग वर्क से जुड़े हुए हैं, घर बनाते हैं हम लोग, कल प्लास्टर का कार्य चल रहा है। जी सर, और कुछ किसानी कार्य भी अभी जारी है, तो हमारे कुछ लेबर मिस्त्री अभी प्रभावित है काम करने के लिए, तो हमारा काम भी प्रभावित हो रहा है क्योंकि अभी खेती किसानी का समय आ गया है।
1: जी जी जी जी जी। तो ये दोनों जो आपके लिए अवसर होते हैं, खास करके अभी बारिश का मौसम है और खेत में भी आप लोगों को जाना रहता है।
2: जी।
1: और ये जो आपका काम है, ये भी आपका कहीं ना कहीं
2: जैसे आपका मकान
1: तो कैसे मेंटेन
2: तो
1: करते हैं
2: सर? इसमें थोड़ा बहुत कुछ लोगों को छूट देना पड़ता है कि अपना घर का काम भी करे और अपने घर के काम से फ्री होकर फिर इधर भी आ जाए, ऐसा करके मैनेज करना पड़ता है।
1: समय पर आप उनको काम दे देते हैं करके?
2: जी जी बिल्कुल, साप्ताहिक पेमेंट करना होता है और सही हाजिरी होता है हमारा।
1: तो समय के साथ आप चलते हैं?
2: जी जरूर सर, अब
1: और समय के साथ आपने आज पहला कॉल भी कर लिया, एकदम बराबर समय पे आपका कॉल लगा है।
2: मैं आकाशवाणी जगदलपुर सुन रहा हूँ मनिंदर सर, आज आपसे दूसरी बार बात हो रही है, पहले और एक बार हम किए थे आपसे बात।
1: जी
2: जी। तो फिर सभी श्रोताओं को मौका देने का वो अवसर रहता है, तो उसके हिसाब से।
1: अरे वाह, क्या बात है, चलिए आप, ये तो आप सजग श्रोता है कि आप ख्याल रखते हैं इस बात का कि नए श्रोताओं को मौका मिलना चाहिए, और बिल्कुल मिलना चाहिए। अब आपकी पसंद का गीत जान लेते हैं, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
2: पसंद का सर गीत है गीत गाता चलो साथी,
1: गुनगुनाता चल।
2: जी, ये वाला गीत सुना दीजिएगा।
1: अच्छा, आप इस फिल्म का शीर्षक गीत सुनना चाहते हैं?
2: जी।
1: आपको क्यों पसंद है ये गाना?
2: मेरे पिताजी और दादाजी भी रेडियो के शौकीन रहे सर, पिताजी अभी भी सुनते हैं।
1: जी।
2: तो वो जब चलाते थे गाना, बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ सर, अभी भी सुनता हूँ मैं।
1: अच्छा।
2: तो एक अलग सुकून मिलता है सर इस गाने से सुनने।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और खास करके इसमें जब खेती खलियान की बातें होती है।
2: हाँ हाँ, तो एक अलग माहौल बनता है,
1: अलग माहौल बनता है। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी आपने एक बहुत अच्छा माहौल बना दिया, मौसम भी बारिश का है और हर ओर हरियाली छाने को तैयार है ना? तो और बताइए, हमारे श्रोता साथी सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप उनके लिए?
2: ऐसा है सर, अभी तो मौसम के हिसाब से जो खेत खलिहान जाते हैं उसमें भी सावधानी हम सबको बरतना है, क्योंकि कई बार कीड़े मकोड़े से भी सामना होना पड़ जाता है।
1: जी जी।
2: ऐसे समय में बिल्कुल, और छोटे छोटे बच्चे सर आसपास जो नाले होते हैं, छोटे छोटे तालाब के रूप में, वहाँ खेलने कूदने चले जाते हैं। कुछ हादसे हुए हैं सर हमारे क्षेत्र में भी,
1: जी,
2: तो चीजों को भी हमको ध्यान में रखते हुए सजग रहना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। और जो गड्ढे होते हैं वो इस बारिश के मौसम में बुरी तरीके से भर जाते हैं, तो उसका अंदाजा नहीं रहता कि कितना गहरा है, खास करके बच्चों को। तो ये हम परिवार के जो जितने भी बड़े लोग हैं उनको पहले से बताना चाहिए कि उस ओर वो ना जाए, है ना?
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और कीड़े मकोड़े की भी बात की आपने, तो बिल्कुल बारिश के मौसम में तो जो अंदर बिलों में रहते हैं कीड़े मकोड़े, वो सब बाहर आ जाते हैं। तो ठीक कहा आपने, और सबको ख्याल रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने हेमराज जी, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी पसंद का जो गाना है गीत गाता चल, आइए सुनते हैं।

0: हेलो फोन इन चार्ज।
1: हाँ जी
0: सर, मैं रुबीन कुमार बोल रहा हूँ, बीरनपाल पटेल पारा ब्लॉक जगदलपुर से ही है।
1: अच्छा, जगदलपुर से बोल रहे हैं
0: जी। सर आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मनिंदर सिंह बोल रहा हूँ।
0: काफी लंबे अंतराल बाद हमारी बातचीत हो रही है सर।
1: रेडियो सुनते हैं हमारे
0: जी सर,
1: आकाशवाणी
0: मैं रेडियो
1: जगदलपुर?
0: का बहुत पुराना श्रोता हूँ सर, मैं आकाशवाणी जगदलपुर का।
1: तो आपके पत्र हमें क्यों नहीं मिलते प्रोग्राम में, फरमाइशी प्रोग्राम में?
0: कॉल पे ही फरमाइश करता हूँ सर।
1: कॉल पे फरमाइश करते हैं, फोन इन चाहत पे?
0: जी
1: अच्छा। अब ये जगदलपुर का जो मौसम है, चारों ओर बारिश
0: बार
1: है, बारिश से सुहावना हो गया मौसम।
0: जी सर,
1: तो क्या कर रहे हैं आप इस मौसम में?
0: आज तो मैं खेत में आया हूँ सर।
1: अच्छा, आप खेती भी है, आपकी किसान है आप?
0: जी सर,
1: तो अभी क्या चल रहा है खेतों में?
0: धान धान लगाए सर।
1: अच्छा, रोपा चल रहा है।
0: जी सर।
1: तो आप बता दीजिए, आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज के इस प्रोग्राम में?
0: सर ये फिल्म है सनम तेरी कसम, इस गाने को गाए हैं कुमार शानू और अलका याग्निक ने। और सर मैं इस गाने को गुनगुना के आपको बता लूं।
1: बिल्कुल।

0: क्या बात है रुबीन जी, क्या बात है। आप तो एकदम ऐसे लग रहा था किसी प्लेबैक सिंगर्स का गाना सुन रहे हैं।
1: सर मुझे ये सिंगिंग का ना बचपन से बहुत शौक है
0: अरे
1: सर।
0: बहुत खूब, बहुत अच्छा गाते हैं आप, कहीं ट्राई कीजिए कभी।
1: जी सर
0: बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जा सकते हैं, बस्तर का नाम रोशन कर सकते हैं, जरूर जाइए।
1: जी
0: और हमें उम्मीद है कि आपकी इतनी अच्छी आवाज और इतना अच्छा आपका जो सुर लगा है इस गाने में,
1: जी
0: इसे सुनकर वहाँ के लोग भी अचरज में पड़ जाएंगे कि बस्तर में इतनी अच्छी अच्छी कला है ना। तो जरूर आप
1: अगर
0: जाइए, ये
1: मैम
0: हम
1: जगदलपुर
0: आपको,
1: में चंद्र ऋषि मैम मेरे को बुलाए थे सर एक बार।
0: अच्छा आप यहाँ आए हैं आकाशवाणी
1: जी
0: में,
1: जी
0: ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद रुबिन जी, आपने हमसे इतनी अच्छी बातचीत की और इतने प्यारे से गीत की फरमाइश की है, और आपने गा के भी हमें बता दिया। अब सुनते हैं इस

0: हाँ पुल कहाँ सरकार।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: हाँ सर, ध्रुवा राम साहू बोल रहा हूँ सर, कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश से। जी
1: ध्रुवा राम साहू,
0: सर,
1: कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे हैं सर।
1: ध्रुवा राम जी बताइए, क्या सेवा करें आपकी, कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: आज के कार्यक्रम में सर, कार्यक्रम का नाम ही है फोन इन चाहत,
1: जी
0: तो गीत है सर, फिल्म का नाम है मन, और गीत के बोला सर, चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम।
1: ये गाना आपको बहुत पसंद है?
0: बिल्कुल सर, बहुत पसंद है। सर हमारे जो मित्र है रेडियो ही है, और मैं बचपन से ही रेडियो सुनते आ रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो
0: सर।
1: इस गीत की फरमाइश रेडियो में आपने की है?
0: हाँ सर, क्या बहुत सारे आकाशवाणी केंद्रों में किए हैं सर।
1: अच्छा, और आज आप फोन इन चाहत में भी इस गीत को सुनना चाहते हैं।
0: जी सर, जी सर।
1: इसके अलावा क्या करते हैं आप?
0: सर मैं क्या है, अतिथि शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ।
1: अच्छा
0: हाँ, लेकिन अभी इन दिनों खेती बाड़ी काम में लगा हुआ हूँ सर। अभी वैकेंसी आती है अभी जुलाई अगस्त से,
1: जी
0: तो जाते हैं सर सेवा देने के लिए, पढ़ाते हैं बच्चों को।
1: जी तो जो खेती बाड़ी आप कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप रेडियो लेकर जाते हैं?
0: हाँ सर, आजकल क्या है, खेत में जो हमारे घर है वहाँ पर,
1: जी
0: और आजकल तो ब्लूटूथ स्पीकर वो लगा हुआ है सर अपने पास, बड़ा सा खेत में ही
1: अच्छा,
0: है, और मोबाइल से कनेक्ट कर देते हैं, सुनते रहते हैं।
1: आप भी सुनते हैं और काम करने वाले जो जितने लोग हैं उनको भी सुनाते हैं?
0: हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनवाते हैं, और
1: अच्छा,
0: समय कब निकल जाता है, काम भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता।
1: और आपका नाम भी आता है फरमाइशी प्रोग्राम में,
0: जी सर, जी सर, भेजते रहते
1: तो
0: हैं सर।
1: वो भी सुनकर आपको कैसा महसूस होता है?
0: बहुत अच्छा लगता है सर, क्योंकि ये जो फरमाइशी जो कार्यक्रम होता है, चाहे वो फोन इन के माध्यम से हो, ईमेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से हो, वो यही तो है सर जो श्रोताओं को जुड़ाव रखता है सर आकाशवाणी से। और
1: जी जी
0: आकाशवाणी का उद्देश्य होता है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय जो भावना है, चरितार्थ करता है, और वसुधा कुटुम्बकम की जो भावना है सर,
1: जी
0: उसके
1: जी
0: साथ सभी लोग जुड़े हुए रहते हैं सर। और
1: जी जी
0: बढ़िया है, एक अंतराल के बाद बातचीत होती है, और सभी मित्र लोग जो लगाते हैं सर अंतराल के बाद ही फोन करते हैं,
1: बिल्कुल
0: बहुत अच्छा
1: बिल्कुल।
0: लगता है।
1: दुर्गा राम जी, इस महीने जुलाई के महीने में कई त्योहारों का आगमन होने को है,
0: जी सर,
1: तो इस जुलाई में आने वाले त्योहारों में आप किस त्योहार का सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं?
0: अब ऐसा सर, त्योहार का जो हरेली जो त्योहार होता है उससे शुरुआत होती है त्योहार की।
1: जी
0: हाँ सर, तो जो पारंपरिक का जो हमारा हल वगैरह है, जो कृषि उपकरण है, और जो हमारी साथी कहा जाना चाहिए बैल है, बिल्कुल उनका देख रेख करते हैं सर, उनका मान सम्मान भी करते हैं बढ़िया। और जो संस्कृति का जो रक्षक है, परिचायक है, वो तो आकाशवाणी होता ही है हमारा,
1: जी
0: समय समय में गीत संगीत जानकारी वो भी सुनने मिलता है सर।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो
0: सर,
1: और आप जैसे कि बताया आप शिक्षक हैं,
0: जी
1: तो
0: सर,
1: आप बच्चों को ये प्रेरणा देते हैं कि रेडियो भी सुना करें करके?
0: हाँ बिल्कुल सर, देते हैं ना सर, प्रेरणा देते हैं उनको।
1: जी
0: हाँ, और जो कार्यक्रम होता है समसामयिक समाचार और ज्ञानवर्धक जानकारियां हैं, वो सब सुनते रहते हैं बच्चे, और आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो गए हैं सर,
1: जी हाँ
0: आकाशवाणी
1: बिल्कुल
0: भी सुनते
1: बिल्कुल,
0: रहते हैं।
1: बहुत
0: बिल्कुल सर,
1: सही कहा आपने। और अब आपने इतनी अच्छी बातें कही है, और रेडियो से आप बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, ये जानकर भी बड़ी खुशी हो रही है। अब
0: बिल्कुल सर,
1: आपकी
0: सन 2000 से जुड़ा हुआ सर रेडियो से, आज मेरे को 26 साल हो गए सर रेडियो सुनते
1: 26
0: हुए।
1: साल हो गए हैं, और 26 साल के इस लंबे पड़ाव में आपने आकाशवाणी जगदलपुर में कई बार कॉल किया है,
0: जी सर,
1: और अब आज की इस कॉल को अंजाम देते हैं।
0: अपने मित्र लोगों का नाम ले सकता हूँ सर मैं?
1: बिल्कुल ले सकते हैं।
0: हाँ सर, डोंगरिया मलाजखंड से मुन्नालाल पटले जी हैं, डंडई से जागेश्वर देवांगन जी है, पवन कुमार सेन जी है, दुर्ग जिला से सुरित रमेश साहू जी है, और अखिलेश यादव जी है, और अशोक कुमार साहू जी है सर।
1: अच्छा, तो ये इस वक्त सारे श्रोता जुड़े हुए हैं आपके साथ,
0: बिल्कुल सर, जुड़े हुए हैं और
1: इस गाने को
0: चर्चा भी
1: सुनने के
0: करते
1: लिए
0: हैं
1: भी
0: सर।
1: बेताब हैं?

0: बिल्कुल सर,
1: चलिए ठीक है, अब सभी श्रोताओं को, आपके सभी मित्रों को हम जो है आपकी पसंद का ये बहुत ही कर्णप्रिय और प्यारा सा फिल्म मन का गीत सुनवाते हैं। आपसे
0: धन्यवाद
1: बातचीत
0: सर
1: हुई,
0: जी,
1: बहुत बहुत
0: आपसे
1: धन्यवाद।
0: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: हेलो।
3: हाँ जी,
2: नमस्कार सर।
3: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
2: सर जी?

0: मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ सर।
1: जगदीश राय गर्ग जी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी। सत श्री
1: और जी
0: अकाल।
1: दसो की हाल चाल।
0: बहुत मजे में, बहुत मजे में,
1: बहुत मजे
0: आनंद
1: में।
0: माण दे।
1: पंजाब का की हाल चाल
0: नहीं
1: है? पंजाब से कदा मी मी पै रहा कि नहीं?
0: जी, अजे तो बहुत गर्मी पै रही है जी।
1: अच्छा
0: इंतजार
1: जी।
0: चल रहेगा भी, शायद अज आ जान, कल नू आ जान, बदल आने वाले
1: चलिए अब आपसे हिंदी में बात करते हैं भाई। आपने कहा कि अभी बहुत गर्मी है पंजाब में,
0: जी।
1: और आपको बता दें हमारे इधर काफी अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, मौसम सुहाना हो गया है।
0: चलो आपको मुबारकबाद देते हैं, आप तो सुहाने मौसम का आनंद
1: आप भी आइए कभी हमारे बस्तर घूमने के लिए, जगदलपुर शहर। बस्तर की
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: आएंगे सर,
1: सारी
0: बिल्कुल
1: ऐसी
0: आएंगे।
1: खूबियां हैं, बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो आप देखकर बहुत रोमांचित हो जाएंगे।
0: जी सर, धन्यवाद आपका, जरूर आएंगे कभी।
1: जरूर आइएगा। और बताइए पंजाब में क्या करते हैं आप?
0: अब जी मैं तो अब रिटायर हूँ, अब बस जीवन का लुत्फ लेते हैं, आनंद लेते हैं, कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल चिंता मुक्त है, सेवा मुक्त है।
1: अरे वाह। और बच्चे कहाँ हैं?
0: बच्चे तो मेरे, मेरा बेटा उधर पालमपुर में, हिमाचल प्रदेश में है जी।
1: जी अच्छा, वो सर्विस में है?
0: नहीं, वो अपना हॉस्पिटल है जी, उनका आंखों का डॉक्टर है मेरा बेटा, और बहू दोनों आंखों के डॉक्टर हैं।
1: अच्छा
0: तो मैं इधर पंजाब में ही रहता हूँ, मेरा इधर ही दिल लगता है पंजाब में।
1: अच्छा। और आप जैसे कि बता रहे हैं कि रिटायर हो चुके हैं, तो इस रिटायरमेंट के सफर में आप क्या क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं, कुछ नया कुछ?
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, बच्चों को मैंने बड़ा, बेटी को और बेटे को दोनों को बहुत पढ़ाया और बहुत बड़े बड़े बना दिया। अब बेशक मैं भले अकेला ही रहता हूँ जहाँ,
1: जी
0: पर फिर भी मैं ये सोचता रहता हूँ कि चलो उनको तो जो कुछ शिक्षा दी है, तो
1: जी
0: अब और भी कोई मेरे संपर्क में आए तो उनको भी मैं शिक्षा दे पाऊँ।
1: अच्छा। इसके अलावा आप की कुछ है क्या?
0: मेरी तो केमिस्ट शॉप थी और दवाइयों की दुकान थी शहर में।
1: अच्छा। तो आपने, अब
0: अब
1: वो दुकान में आप बैठते हैं या नहीं?
0: नहीं, अब मैंने छोड़ दी थी, फिर मैंने सोचा भी चलो अब सारी जिंदगी कितनी कमाई करेंगे, अब बच्चे हो गए हैं बड़े, कमाने लग गए हैं, तो आनंद भी
1: अच्छा,
0: लें थोड़ा सा
1: तो
0: जिंदगी
1: अब
0: का।
1: आप जीवन का संपूर्ण आनंद लेना चाह रहे हैं,
0: बिल्कुल सर,
1: और इस
0: बिल्कुल है,
1: संपूर्ण आनंद में
0: कमाकर क्या
1: आपका
0: करें।
1: आपका साथ रेडियो देता है।
0: बिल्कुल, ये तो मेरा सच्चा साथी है
1: सच्चा
0: और आखिरी
1: साथी
0: दम
1: है।
0: तक रहेगा भी।
1: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। बड़ा अच्छा लगता है जब आप जैसे इतने रेडियो प्रेमियों के साथ जब बातचीत होती है तो मन बड़ा खुश हो जाता है जगदीश जी।
0: पिछले 60 साल से मैं रेडियो से इतना जुड़ा हूँ कि
1: जी
0: रेडियो के बिना एक दिन भी मैं गुजार नहीं सकता।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ क्या बात है। तो हमारे जगदलपुर के कार्यक्रमों को आप सुनते हैं?
0: हाँ, अभी तो ऐप आ गई है, अब तो हमें बस स्वर्ग मिल गया है।
1: स्वर्ग मिल गया है, क्या बात है, बहुत सही।
0: पहले तो नहीं सुन पाते थे, पर अब तो टेक्नोलॉजी को सलाम करते हैं कि जिन्होंने हमें सब कुछ उपलब्ध करवा दिया है।
1: हाँ, मतलब न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पे जब से ये प्रोग्राम्स आ रहे हैं रेडियो के,
0: हाँ
1: तो
0: जी,
1: आप
0: हाँ
1: कहना
0: जी,
1: चाहते हैं कि आपको एक अनमोल कोहिनूर प्राप्त हो गया है,
0: बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बहुमूल्य खजाना हमें मिल गया।
1: मिल गया है, क्या बात है। तो अब आप भी कोई ऐसा अनमोल गीत बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम में?
0: सर मैं आज गीत सुनूंगा, फिल्म है राजा साहब, उसमें लता जी का गाया हुआ गीत है। गीत तो थोड़ा सा संजीदा सा ही है, पर मेरे को प्यारा बड़ा लगता है,
1: अच्छा जी, बताइए।
0: तो मैं उसको दो लाइन तरन्नम में बताऊंगा।
1: हाँ जी बिल्कुल, तरन्नुम में बताइए।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हेलो, फोन इन चाहत।
4: हाँ सर, नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: हाँ, मैं मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू बोल रहा हूँ।
3: श्रवण कुमार साहू जी, कैसे हैं?
4: बढ़िया हैं सर।
3: और आप
4: कैसे हैं?
3: आप शिक्षक हैं ना?
4: जी जी, मैं शिक्षक हूँ। आप देवगुण सर बोल रहे हैं ना?
3: हाँ जी, मैं मनिंदर सिंह देवगुण बोल रहा हूँ।
4: जी जी।
3: और बताइए, आपके तरफ मौसम कैसा है अभी?
4: मौसम तो बढ़िया है सर, कल से बारिश हो रही है।
3: जी।
4: आज भी झिमिर झिमिर बारिश हो रही है अभी।
3: जी जी।
4: अब हल्की फुहारों के बीच में है।
3: और बारिश के मौसम में आप, मतलब तेज बारिश होती है तो कैसा बचाव करते हैं? और आप तो जैसे कि शिक्षक हैं, आपने बताया बच्चे भी आते जाते रहते हैं, तो कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि कोई जो बच्चा है ना, छात्र है या छात्राएं हैं, वो किसी कारणवश बारिश की वजह से देरी से आते हैं, तो क्या आप उन्हें समझाते हैं या कोई दंड देते हैं या फिर उनकी सहायता करते हैं आप?
4: सवाल तो ये है सर, आपकी जो है दंड की प्रावधान नहीं है, समझाइश दिया जाता है
3: जी।
4: कि अपने को सुरक्षित रूप से आना है, चाहे छाते के रूप में आ जाइए, चाहे रेनकोट लगाकर आ जाइए, लेकिन समय पर पहुंचिए, ऐसा करके उनको समझाइश दिया जाता है
3: जी। और जो छात्र आपके आते हैं, उनके आने का साधन ठीक है? कहीं ऐसे पगडंडी या फिर ऐसे कोई नाले को या कोई नदी पार करके आना पड़ता हो, ऐसा तो नहीं है?
4: नहीं सर, पक्की सड़क है, ये मैदानी इलाका है।
3: अच्छा।
4: सभी लोगों के लिए आवागमन की सुविधाएं हैं पर्याप्त मात्रा
3: जी। तो इस वजह से क्या है, बच्चे समय आ ही जाते हैं,
4: पहुंच जाते हैं सर, कोई परेशानी नहीं हो पाती है।
3: बारिश का जो ये मौसम है, इसमें आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब गरम गरम चाय और गरम गरम पकौड़े मिलते हैं तो काफी मजा आता है ना?
4: बहुत।
3: आपको पसंद है?
4: जी जी, पसंद है सर।
3: तो इसको लेते हुए कौन सा गीत आपको याद आता है कि कौन सा गीत सुना जाए ऐसे मौसम में?
4: अभी आपके लिए सर मैं, और मेरे लिए फिल्म धर्मात्मा को सुना दीजिए, तेरे चेहरे में क्या जादू है।
3: अच्छा, बहुत अच्छा गीत आपने कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में सुनना चाहा है, किशोर कुमार की आवाज।
4: जी जी जी।
3: आपकी इस पसंद को हम आपकी नजर करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं?
4: और मेरे मित्र है सर, ये मेघापारा चिल्फी के राम कुशल पटेल जी है
3: जी,
4: और सहसपुर लोरमी के छोटकू राम साहू मोहित साहू जी है
3: जी,
4: ये सभी मित्रों के साथ ये गीत प्ले कर दीजिए।
3: चलिए, आपके मित्रों के साथ आपकी पसंद का ये गीत हम भी सुनते हैं फिल्म धर्मात्मा से। श्रवण कुमार जी, हमसे आपकी बातचीत बड़ी प्यारी हुई, अब बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फोन इन चाहत
1: जी। नमस्कार सर, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ सर, मैहर एमपी से।
0: मैहर
1: माता जी के नगरी से बात कर रहे हैं सर।
0: मैयर से बात कर रहे हैं आप?
1: जी जी
0: अच्छा,
1: जी जी।
0: अच्छा, जय माता दी।
1: जय माता जी की सर। हम सोचे चलते चलते हमारा भी फोन शामिल कर लीजिएगा सर।
0: बिल्कुल, आपका फोन शामिल हो गया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है फोन इन चाहत कार्यक्रम में। आप सुनील जी क्या काम करते हैं, आप बताएं अपने बारे में, कुछ जानकारी दें।
1: जी सर, हम मशीन चलाते हैं, जेसीबी मशीन चलाते हैं, और आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं सर।
0: अच्छा,
1: मोबाइल एप्लीकेशन में सर।
0: ये
1: जी सर।
0: आप प्राइवेट चलाते हैं या गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं?
1: जी प्राइवेट चलाते हैं सर।
0: प्राइवेट चलाते हैं।
1: जी जी।
0: तो ज्यादातर जो है ये काम गृह निर्माण के लिए या नालियों के लिए भी आप जाते हैं सफाई में?
1: जी सर, मतलब कहीं भी काम मिलता है वहाँ चले जाते हैं सर। सबसे ज्यादा कंपनी में चलती है सर मशीन।
0: अच्छा,
1: चैन वाली है, चैन वाली चलाते हैं सर।
0: तो आपने प्रशिक्षण कहाँ से लिया इसका?
1: जी इसका सर मतलब सीखे थे उस्ताद से, और सीखने के बाद फिर चांस मान लिए, तो अभी स्वयं चलाते हैं सर।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। काफी अच्छा काम करते हैं और काफी बड़ा काम करते हैं आप। जेसीबी चलाते हैं और जेसीबी मशीन के द्वारा जो है काफी गृह निर्माण भी होता है और कई बार जो है तोड़फोड़ भी किया जाता है।
1: जी जी जी जी सर।
0: जेसीबी मशीन जब आप चलाते हैं तो आवाज तो बहुत का शोर बहुत होता है।
1: जी जी जी।
0: तो
1: तो
0: रेडियो
1: फोन
0: के कार्यक्रम
1: होता
0: कैसे
1: तो
0: सुनते हैं आप?
1: जी तो हम इसमें चलता रहता है सर, अपना मोबाइल पे आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिए।
0: अच्छा।
1: और अपना इसमें मशीन में चलता रहता है सर।
0: हाँ, तो आप उसको भी सुनते रहते हैं और उधर से तोड़फोड़ भी करते रहते हैं।
1: जी जी जी जी जी सर। और सर
0: अच्छा।
1: वहाँ का मौसम का क्या हाल चाल है सर?
0: अरे बहुत अच्छा मौसम है, बारिश के मौसम का आनंद ले रहे हैं। आपकी तरफ बताइए कैसा मौसम है?
1: जी जी सर, हमारे यहाँ तो कल परसों से बारिश हमारे यहाँ भी हो रहा है, बीच बीच में बहुत दबा के बारिश हो जा रहा है सर।
0: तो अब बताइए, अब फिर व्यस्त हो जाएंगे आप। उससे पहले आपके पसंद को हम जान लेते हैं, आपकी
1: जी
0: पसंद
1: आज
0: कौन
1: हमको
0: सा?
1: सुना दीजिएगा राजा हिंदुस्तानी का गाने का, बोला कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
0: हा, क्या बात है। आपकी पसंद का गाना हम आपको सुनवाते हैं। कितना

0: हेलो, फोन इन चाहत।
1: हाँ भैया नमस्ते। योगेश
0: हाँ नमस्ते
1: जांगड़े सिरवा बांधा बेमे तरह से।
0: योगेश जांगड़े जी, नमस्कार। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है भैया, अच्छे हैं।
0: रेडियो के श्रोताओं में जाना माना नाम है आप।
1: आप लोगों का प्रेम है भैया।
0: अच्छा योगेश जांगड़े जी, हमने कुछ दिनों पहले ऐसा कुछ न्यूज में सुना था कि आपने कुछ मतलब रिकॉर्ड बनाया है।
1: गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है भी सबसे ज्यादा फोन कॉल्स करने के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो ये कैसे करके उन्होंने जाना कि आपने इतने कॉल्स किए हैं? आप बताए हैं या फिर ऐसा कुछ रहता है?
1: मेरे पास लगातार, मैं 18 साल से फोन इन कार्यक्रम से जुड़ा हूँ भैया,
0: हाँ
1: और लगातार प्रतिदिन जितने भी कॉल लगते हैं उनको रजिस्टर नोट करता हूँ,
0: जी
1: और 5 रजिस्टर अब तक भर चुके हैं, और
0: जी
1: लगभग 8,000 के आसपास तो मेरे पास ऑडियो कॉल्स भी रिकॉर्डिंग है।
0: अरे वाह वाह, क्या बात है। मतलब काफी वर्षों से आप जुड़े हुए हैं।
1: जी, महज 15-16 साल की उम्र से, और अभी तो 34 साल का हूँ।
0: तो आपने लगभग भारत के सभी स्टेशन में कॉल लगाए होंगे? जी
1: 180 रेडियो स्टेशन है भैया, वहाँ लगातार जुड़ते रहता हूँ।
0: अच्छा, तो आप कभी अदर लैंग्वेज वाले स्टेशन में भी लगाते होंगे कॉल?
1: जैसे इंग्लिश सॉन्ग वाले में भी लगाता हूँ, जो वेस्टर्न
0: अच्छा,
1: म्यूजिक आते हैं।
0: तो वहाँ कैसे बात होती है? वहाँ हिंदी में बात होती है आपसे?
1: नहीं, इंग्लिश में बात करते हैं
0: इंग्लिश में बात करते हैं आप? कर लेते हैं इंग्लिश में
1: जी।
0: बातचीत?
1: हाँ जी, कर लेते
0: अरे
1: हैं।
0: वाह वाह, क्या बात है। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत नाम रोशन किया है श्रोता संघ का।
1: ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भैया, और ऑफिशियली दर्ज है, ये ऑनलाइन भी मतलब दिख जाता है।
0: हाँ, तो आपने कितने कॉल किए आज तक?
1: रिकॉर्ड में 12,870 दर्ज है, और अभी फिलहाल तो 16,000 पहुंच चुके हैं।
0: तो ये आप लिखते भी हैं और इसका रिकॉर्ड रखते भी हैं। वाह वाह, चलो बहुत बढ़िया। योगेश जांगड़े जी, आपसे हमारी बातचीत हुई। अब आप बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं फोन इन चाहत में?
1: कल से बारिश शुरू हुआ है भैया, तो फिल्म सावन को आने दो का टाइटल सॉन्ग सुनवा दे
0: चलिए
1: जी।
0: प्ले करते
1: बहुत
0: हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया भैया।
0: जी।

0: हेलो, फोन इन चाहत।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार
1: जी, मैं उदयलाल टेलर बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: उदयपुर राजस्थान से।
0: अच्छा, याद आया, आपकी और हमारी बातचीत हुई है।
1: जी सर, पहले हुई थी एक बार।
0: मैंने कहा था उदयलाल जी उदयपुर से बोल रहे हैं।
1: हाँ जी सर, सर सही पहचाना।
0: क्या बात है, बहुत दिनों बाद बात हो रही है आपसे।
1: हाँ सर, फोन लगता नहीं है जगदलपुर में, आपके श्रोताओं की संख्या ज्यादा है।
0: अब ये आप लोगों का स्नेह है, प्यार है कि आप बेताबी से पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं आज के दिन का कॉल
1: जी
0: लगाने के
1: सर,
0: लिए।
1: जी सर, और एक बात है, अंतराल रखना चाहिए थोड़ा सा।
0: हाँ जी बिल्कुल, आप ख्याल रखें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी पसंद का गाना बता दीजिए, हम आपको सुनाएं।
1: तो सर, पुरानी फिल्म है अभिनेत्री, उसमें एक गाना है, सजना मेरे सजना लाख दिन तेरे, मेरी तो बस यही एक शाम।
0: हा हा, क्या बात है, लता मंगेशकर जी का गाया हुआ है।
1: जी सर,
0: बहुत प्यारा गीत आपने पसंद किया है आज
1: जी
0: के इस
1: सर।
0: कार्यक्रम में। और बताइए उदय लाल जी, कुछ अपने बारे में, वहाँ के मौसम के बारे में क्या हालचाल है?
1: मौसम तो सर आज सुबह से बादल छाए हुए हैं, लेकिन बरस नहीं रहे, और हमेशा हमारे उदयपुर में एक वो रहता है कि लास्ट में जाते जाते बारिश ज्यादा होती है।
0: अच्छा, तो बारिश के मौसम में आपको आपका बचपना याद आता है?
1: जी सर, बारिश के मौसम में तो हम गांव में रहते थे सर।
0: हाँ हाँ,
1: तो गांव का तो माहौल ही अलग था, कच्ची सड़कें नहीं थी, कच्चा रास्ता था, तो कीचड़ होता था बारिश में, नंगे पैर जाते थे, क्योंकि प्लास्टिक के जूते वहाँ उस समय
0: नहीं मिलते थे,
1: चलते नहीं थे, आए ही नहीं थे मार्केट में प्लास्टिक के
0: नहीं
1: जूते,
0: थे।
1: तो चमड़े के जूते पहन देते, खराब हो जाते। और सर क्या बोले कि हमारे पास छाता भी नहीं होता था गांव में।
0: अरे तो वो बारिश में भीगने का मजा आता था उस दौर में, बच्चे तो घर में ही कम रहते थे और खेलने कूदने में ज्यादा लगे रहते थे।
1: जी सर,
0: आपने
1: हाँ जी,
0: नाव चलाई है वो बारिश में, कागज
1: नाव
0: की नाव?
1: तो, हाँ कागज की नाव तो बहुत चलाई सर।
0: अच्छी बात है, आपकी प्यारी सी याद जो बचपन की है आपने
1: और
0: हमसे
1: छोटे
0: साझा
1: छोटे
0: की।
1: तालाब में बहुत तैरते भी थे
0: हाँ हाँ
1: स्कूल की छुट्टी होने के बाद में, और घर वाले ढूंढते ढूंढते आते थे और फिर
0: फिर
1: पकड़ के ले
0: पिटाई
1: जाते
0: होती
1: थे।
0: थी।
1: जी जी जी
0: ये
1: सर,
0: भी बहुत अच्छी बात है, ये बचपना जो है बहुत याद रहेगा। आज की जो
1: जी सर,
0: पीढ़ी है इसे तो मतलब
1: आज की
0: अपने
1: पीढ़ी तो आज
0: बांध
1: की
0: के
1: पीढ़ी का
0: रखती
1: सर
0: है।
1: बचपना खत्म हो गया है। सुबह स्कूल जाओ, वापस आओ, फिर होमवर्क करो, फिर ट्यूशन जाओ,
0: हाँ जी,
1: और थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मोबाइल देखो,
0: मोबाइल देखो,
1: टीवी
0: फिर
1: देखो,
0: रात का भोजन करो और फिर सो जाओ।
1: फिर सो जाओ, और सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाओ। सर बहुत बिजी
0: बहुत व्यस्त
1: लाइफ
0: हो
1: हो
0: गए
1: गई
0: हैं
1: बच्चों
0: आजकल
1: की,
0: के बच्चे। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिजी
1: और
0: लाइफ है,
1: एक्टिविटी खत्म हो गई सर। स्कूलों में ग्राउंड ग्राउंड भी नहीं है।
0: ग्राउंड भी नहीं है, सही कहा आपने। अब कई कारण हैं आज के समय में, जो माता पिता हैं वो भी सबके सब जो हैं कहीं ना कहीं सर्विस करते हैं।

0: नौकरी करते हैं, तो समय का थोड़ा अभाव तो सभी को हो गया है। अभी
1: माता पिता के पास भी समय नहीं है, दादा दादी साथ में नहीं रहते हैं, वो अलग गांव में रहते हैं, माता पिता शहर में रहते हैं, तो ये भी एक समस्या है सर।
0: तो उदयलाल जी, आपने अपनी बहुत सी मीठी मीठी यादें हमसे ताजा करी, और आपको भी अच्छा लगा होगा याद करके अपने पुराने दिन, और हमें भी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी मीठी मीठी यादों के साथ अब अभिनेत्री फिल्म का ये गाना भी सुनते हैं।
2: सजना ओ सजना।

0: हेलो, फोन इन चाहत।
1: नमस्कार सर, जय जोहार।
0: अरे जय जोहार बोलने से याद आया, रोशन देवांगन जी हैं
1: बिलाईगढ़
0: से।
1: जी सर, रोशन देवांगन बोल रहा हूँ सर, बिलाईगढ़ से।
0: अच्छा, और बताइए कैसा है मौसम आपके तरफ, बारिश हो रही है?
1: मौसम सर 2 दिन हो गया खराब है और रिमझिम रिमझिम बारिश चढ़ रही है सर, थोड़ा थोड़ा, जोश नहीं हो रहा है। मानसून आ गया है और किसानों के चेहरे में चमक जाग उठी है सर, अभी धान वान बोने के लिए।
0: तो पहली बारिश है, तो कुछ अपनी यादें ताजा करना चाहेंगे इस मौसम के हिसाब से?
1: जी सर, पहली बारिश हो रही है। बचपन में थे तो पहला बारिश होता था तो खूब नहाते थे सर बचपन में।
0: अच्छा
1: जी सर, वही याद आता है।
0: अच्छा, और इस बारिश के मौसम में कौन सा गीत ज्यादा याद आता है आपको?
1: मौसम भाई मानो आज पहली बार धड़के दिल बार बार।
0: हाँ, क्या बात है। और बताइए रोशन जी, कैसा चल रहा है कामकाज?
1: कामकाज बढ़िया है सर, ठीक ठाक है।
0: और आजकल आप मोबाइल के माध्यम से जो है जुड़े हुए
1: जी
0: हैं
1: सर,
0: लोगों के साथ, तो नहीं, जैसे अभी AI का उपयोग बहुत हो रहा है, आप जैसा
1: जी
0: कि
1: सर,
0: जानते
1: जी सर, जी
0: हैं,
1: सर,
0: तो ये AI का उपयोग

0: करना।
1: जी सर, जी सर, जी जी।
0: कुछ पुराने चेहरे भी नए तरोताजा हो जाते हैं इसमें।
1: जी जी जी जी।
0: जो तस्वीर होती है वो बहुत उभर के आती है।
1: जी सर, जी सर।
0: और बताइए, हमारे श्रोता साथी आपको सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम कॉल है, कुछ कहना चाहते हैं आप?
1: अब श्रोताओं साथियों को यही कहना चाहूंगा सर, मौसम अब बारिश का तो मौसम आ गया है
0: जी,
1: और साफ सफाई रखना भी जरूरी है सर
0: जी।
1: तो अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें और घर के आसपास में पानी वानी जमा ना होने दें, क्योंकि पानी जमने से फिर कीड़ा पैदा होता है, फिर मच्छर पैदा होते हैं, फिर वो काटते हैं तो फिर तबीयत खराब होता है सर। इसी को ध्यान देना है।
0: वैसे तो ध्यान हर मौसम में दिया जाना चाहिए।
1: जी सर, जी सर।
0: रोशन देवांगन जी, आपकी पसंद का गाना जो है तैयार हो गया है भजने के लिए।
1: जी सर, जी सर।
0: तो चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं।

0: अंगिला।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम फोन इन चाहत से अगर आप जुड़ना चाहते हैं और अपने कॉल करना चाहते हैं और अपनी मनपसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लें। हमारा नंबर है 2226662266। जगदलपुर के बाहर के श्रोता इस नंबर से पहले जगदलपुर का एसटीडी कोड 07782 जरूर लगाएं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे तक और इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है रविवार सुबह 10:30 बजे। आज इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं का फोन लगा है उनसे गुजारिश है कि आने वाले 4 सप्ताह के पश्चात ही दोबारा इससे प्रोग्राम में कॉल करें। तो अब इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत। प्रस्तुति थी मनिंदर सिंह देवगुन की और इस कार्यक्रम की संयोजिका थी चंद्र ऋषि ठाकुर। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 11:31 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में राष्ट्रीय देव और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोक गीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में राजश्री देव और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में राजश्री देव और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।

लोकगीतों के कार्यक्रम गुर्दों में इस समय आप सुन रहे हैं राजश्री देव और साथियों के गाए हल्बी और गोंडी लोकगीत।

लोक गीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में आप सुन रहे थे राष्ट्रीय देव और साथियों के गाए हल्बी और गोंडी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 11:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में

कार्यक्रम गुड़दुम में आप सुन रहे थे राष्ट्रीय देव और साथियों के गाए हल्बी और गोंडी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 11:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में

एवं संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधायक पुरंदर मिश्रा समेत कला जगत से जुड़े लोग और अनेक गणमान्य नागरिक एम्स पहुंचे और तीजन भाई के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तीजन भाई का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीजन भाई का निधन न केवल लोक कला जगत के लिए बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ तथा समस्त देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। अपनी अद्वितीय गायन शैली, विलक्षण प्रतिभा और लोक परंपराओं के संरक्षण के माध्यम से उन्होंने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया। उनका अतुलनीय योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। तीजन भाई का अंतिम संस्कार आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके गृहग्राम गनियारी में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सुशासन और अभिसरण विभाग और आईआईएम रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन आज सुबह मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान के परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इस शिविर का कल शुभारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिविर का उद्देश्य शासन प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितैषी बनाना है। उन्होंने कहा कि पिछले चिंतन शिविरों के सुझाव के आधार पर ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसी पहले शुरू की गई। शिविर में सुशासन, उभरती तकनीकों, कृषि समृद्धि, प्राकृतिक खेती और नेतृत्व विकास जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। इस शिविर में मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल हो रहे हैं। इस चिंतन शिविर का आज समापन होगा। छत्तीसगढ़ को खरीफ सीजन के लिए 46,500 मीट्रिक टन अतिरिक्त डीएपी उर्वरक आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिरिक्त डीएपी मिलने से किसानों को समय पर खाद उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में यूरिया पहले से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और अब खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। मौसम विभाग ने आगामी

0: समाचार एक बार फिर। मशहूर पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन। आज शाम दुर्ग जिले के कन्यारी गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। रायपुर में चल रहे चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने आज सुबह योगाभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए रुसरुसा कार्यक्रम में लोक गाथा सुलोचना सोसी सेना भाग 1। गायिका हैं बेलमती नाग और रेमी।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस
1: रुसरुहा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लोक गाथा सुलोचना सोसी सेना भाग एक। गायिका थी बेलमती नाग और रेमी। श्रोता साथियों, हम आपको याद दिला दें, लोक गाथा का अगला भाग आप सुनेंगे अगले शुक्रवार को। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
0: घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आम चो

अथान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 to 4 तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आम चो

0: 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 होने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए शहरी महिला बहनों का अपना कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को डॉक्टर मधु जैन का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज के दौर में आप तो जानती ही हैं कि जहां महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हो चुकी हैं, वहीं रोजगार के अनेक अवसर आज महिलाओं के लिए खुले हैं और महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की राह भी पकड़ ली है। और बहनों, ये आज के वक्त की मांग भी है कि महिलाएं भी काम करें और अपने परिवार की आर्थिक उन्नति में अपना सहयोग दें। और महिलाओं की शिक्षा न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है बल्कि उन्हें बुरे समय में या किसी मुश्किल समय में अपने परिवार को संभालने की कला भी सिखलाती है। और बहनों, केवल शिक्षा बल्कि स्वरोजगार भी एक ऐसा माध्यम है जहां महिलाएं अपने रोजगार का विकल्प चुनती हैं और अपने परिवार के आर्थिक सहारे का कारण बनती है। और ये चाहे बच्चों की शिक्षा के लिए हो या परिवार के भरण पोषण के लिए हो या अपने शौक की पूर्ति के लिए, किसी भी रूप में हो, बात तो एक ही है बहनों कि आज के दौर में

लगते हैं घर के कामों में और ये सोच रखते हैं कि वो भी तो काम करके आती है और थक जाती है। पर बहनों, बात कोई भी हो, महिला कुशल प्रबंधक तो है ही, तभी वो घर और बाहर दोनों का प्रबंधन बड़े ही सुचारू रूप से कर पाती है। और इसी प्रबंधन के कारण तो उसे कहा जाता है कि महिलाएं कार्य क्षेत्र में भी अच्छी प्रबंधक कहलाई जाती हैं और पूरी संवेदनशीलता के साथ अपना काम करती हैं। और बहनों, एक बात और है, जब महिलाएं बाहर जाती हैं काम करने के लिए तो कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि आज के जमाने में प्रगतिशील पुरुष जो है सफल और सशक्त महिलाओं की सोच को बर्दाश्त नहीं कर पाता और कई बार ईगो क्लैशेस के चलते भी अपने सहकर्मियों को परेशान किया जाता है और कई बार कार्यस्थल पर महिलाओं को प्रताड़ना भी झेलना पड़ता है। तो बहनों, इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जब कभी भी अपने कार्य क्षेत्र पे हों, अनावश्यक बातें ना करें और शुरू से ही एक मर्यादा, एक डिस्टेंस, एक दूरी बनाए रखें सहकर्मियों से भी, ताकि कोई भी आपके इतने करीब ना आ सके और आपकी बातों को जान ना पाए और आपको कल ब्लैकमेल ना कर पाए। कभी आप भावनात्मक रूप से यदि कमजोर पड़ जाती हैं, घर की किसी समस्या का जो है डिस्कशन अपने सहकर्मियों से करती हैं, तो हो सकता है कल के दिन वो आपके साथ इस तरह का व्यवहार करें, आपकी सिंपथी गेन करने की कोशिश करें और कुछ समय बाद जो है झूठे प्यार का दिखावा करके आपके साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बहनों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप स्वयं को मजबूत बनाएं, क्योंकि जब महिला घर से बाहर काम करती है तो उसे कई तरह की दिक्कतें होती हैं और इन दिक्कतों को पार करते हुए वो अपने परिवार की भलाई के लिए काम करती है। और दूरी बनाकर रखना, संक्षिप्त बातों का जवाब देना और जिससे जितनी मर्यादा है उतनी ही दूरी बनाना, कभी भी शॉर्टकट में तरक्की पाने की चाहत ना रखें, ना किसी को इसका फायदा उठाने दें। ये सब बातें जिस दिन आप गांठ बांध लेंगी, कोई भी आपको प्रताड़ित नहीं कर पाएगा। और बहनों, इतना साहस जरूर रखें कि जब कभी आप किसी तरह से प्रताड़ित हो, चाहे मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से, आप उसकी शिकायत करने का दम जरूर रखें। आज तो शासन ने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जहां पर महिलाएं अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख सकती हैं और बिना आपका नाम सामने आए भी आप अपनी चीज़ों को रख सकती हैं, पुलिस की मदद ले सकती हैं। और बहनों, वैसे भी तो गलत सहना जो है, चाहे वो घर पर हो या घरेलू हिंसा की बात हो या कार्यस्थल पर हिंसा की बात है, ये दोनों चीज़ों को आपको सहना ही नहीं चाहिए। और आज की शिक्षित महिला में ये समझ तो ज़रूर विकसित होनी चाहिए कि उसे अपने व्यक्तित्व को किस तरह से लेकर चलना है, क्योंकि जब एक व्यक्तित्व महिला का इस कदर निखरता है कि वह अपने सारी चीज़ों को, अपने गुणों को, अपने स्वाभिमान को और अपने आत्मविश्वास को अपने साथ लेकर चलती है, तो सामने वाला व्यक्ति भी उससे बात करने में खबर आता है। और ईश्वर ने महिला को छठवीं इंद्री का एक अद्भुत उपहार भी दिया है, जिससे महिला को आभास हो जाता है कि कौन व्यक्ति सही है और कौन गलत है। और बहनों, किसी भी तरह की मदद लेने में ना संकोच करें, ना आप, अगर आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं, और कभी भी कोई गलत काम ना करें जिससे आपका आत्मविश्वास भी कभी नहीं लड़खड़ाएगा। तो बहनों, ये सारी बातें थी। और जब कभी आप प्रताड़ना के शिकार हों तो आप देखिए, आपके कार्यस्थल पर भी ऐसी कमेटियां बनी होती हैं जहां पर आप शिकायत कर सकती हैं। आंतरिक शिकायत समिति का भी गठन किया जाता है, चाहे वह स्कूल कॉलेज हो या दफ्तर। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और अपने कार्य को बड़े अच्छे से अंजाम दें। और बहनों, ये तो हो गई आज आपकी, हमारी आपकी चर्चा का विषय, जिसका था कामकाजी महिलाओं की समस्या और उनका समाधान। तो बहनों, अब आपको इंतज़ार होगा कि हम आपको आज क्या सुनवाने वाले हैं। तो बिल्कुल, हम आज आपको एक वार्ता सुनवाएंगे जिसमें आप जानेंगी और वार्ताकार के वार्ता के माध्यम से, और गीत संगीत का इंतज़ार तो आपको है ही, क्योंकि आप जैसे ही रेडियो ऑन करते हैं आपको इंतज़ार होता है हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। और बहनों, जब बात स्त्रियों की होती है तो स्त्रियां भावनात्मक रूप से बहुत ही संवेदनशील होती हैं और प्यार उनके लिए, प्रेम उनके लिए बहुत ही बड़ी पूंजी होती है। और बहनों, प्यार हो या ना हो, ये पता तब तक नहीं चलेगा जब तक इजहार ना हो। आंखों की मौन अभिव्यक्ति भी यहाँ काम नहीं आती, और स्त्री जहाँ इसकी मुखरता चाहती है वहीं पुरुष इसे टालता है या मजाक करता है। किंतु ये हंसी मजाक कब तक और कैसे चलता है, आइए सुनते हैं इस गीत के माध्यम से।

0: बहनों, हम सुन रहे थे फिल्म शरीफ बदमाश का ये गीत आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। संगीत आरडी बर्मन का था और शब्द लिखे थे आनंद बख्शी ने। आइए अब हम सुनते हैं ये संदेश।
1: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782

0: 2226666 फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने
1: सो बेड़किन बिड़िया राहत तिंदना उंडना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मायो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोलावेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चावेंट कम लगे माता जीवन बीमा तगवेंट इंजे जीएसटी छूट दरकिता अदेन के पॉलिसी पोईतनद इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता कोटरो गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरो गाड़ी असित के सस्ता दरकिता।
2: बहनों, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको आज एक वार्ता सुनवाएंगे और हमारे घर पे बच्चे जो हैं हमारे घर के सबसे बड़े नटखट भी होते हैं और हमारी आस भी होते हैं। तो आइए हम आपको सुनवाते हैं वार्ता के अंतर्गत ये वार्ता, जिसका विषय है घर के चमकते सितारे। वार्ताकार हैं रोशनी चंपावानी।
3: कार्यक्रम घर आंगन सुनने वाली सभी महिलाओं यानी बहनों को कार्यक्रम घर आंगन सुनने वाली सभी महिलाओं यानी बहनों को मेरा यानी रोशनी चंदवानी का नमस्कार। बहनों, आज हम बात करेंगे आपके घर की सबसे चमकती सितारों की। जरा सोचिए, वे सितारे

कार्यक्रम घर आंगन सुनने वाली सभी महिलाओं यानी बहनों को मेरा यानी रोशनी चंदवानी का नमस्कार। बहनों, आज हम बात करेंगे आपके घर की सबसे चमकती सितारों की। जरा सोचिए, वे सितारे

है, पर सवाल भारी हो गए हैं। आज ज्ञान किताब से निकलकर आपके मोबाइल फोन में समा गया है। इसलिए बहनों, बहुत सही कहा गया है कि मोबाइल हाथ में दे दो पर संस्कार जड़ों में रहने दो, क्योंकि ऐप्स डिलीट हो सकते हैं, आदतें नहीं। बहनों, आज का युवा यूट्यूब का विद्यार्थी है। वो 15 मिनट के वीडियो से रॉकेट साइंस समझ लेता है। वो इंस्टाग्राम की रील से इतिहास के किस्से जान लेता है। वो गूगल से पूछता है, चैट जीपीटी से बहस करता है। उसके लिए क्लासरूम की चार दीवारी अब टूट सी गई है। पूरी दुनिया ही उसकी प्रयोगशाला बन गई है। बहनों, पहले हम पूछा करते थे, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? जवाब आता था, डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, टीचर इत्यादि। आज बच्चा पूछता है, माँ मैं यूट्यूबर क्यों नहीं बन सकता? कोडिंग से गेम क्यों नहीं बना सकता? उसके क्यों पढ़े का जवाब अब बदल सा गया है। अब वो डिग्री के लिए नहीं, हुनर के लिए पढ़ता है। नौकरी के लिए नहीं, अपना काम शुरू करने के लिए सीखता है। बहनों, कहते हैं ना, पहले बच्चे कंघी से बाल बनाते थे, आज कोडिंग से कल बनाते हैं। औजार बदले हैं, उड़ान का जज्बा वही है। बहनों, हमने पहले का वक्त भी देखा है, जब बच्चे दिन की शुरुआत दूध के गिलास से करते थे। परंतु आज के समय में बच्चे अपने दिन की शुरुआत मोबाइल के नोटिफिकेशन से करते हैं। पहले रात की कहानी दादी नानी सुनाया करती थी, अब स्क्रीन सुनाता है। बहनों, तकनीक अब खिलौना नहीं, दिनचर्या का हिस्सा बन गई है। बहनों, आज गांव का बच्चा भी IIT का लेक्चर YouTube पर फ्री देख लेता है। पहले ये सिर्फ शहरों के बच्चों को फैसिलिटीज मिला करती थी। बहनों, आज बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत से माध्यम अवेलेबल उपलब्ध हैं। बहनों, साथ ही साथ नया हुनर, नया रोजगार उन्हें प्राप्त हो रहा है, जैसे कोडिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग। ये सब मोबाइल से सीखकर बच्चे घर बैठे कमा रहे हैं, डिग्री का इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा है। बहनों, आज सोशल मीडिया ने हर बच्चे को प्लेटफॉर्म यानी कि मंच दे दिया है, जिससे उसका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सा गया है। बहनों, आज बच्चा सेकेंडों मिनटों में देश विदेश की जान लेता है। जापान में खेती कैसी होती है, अमेरिका में पढ़ाई कैसी होती है, एक क्लिक में सारी जानकारियां प्राप्त कर लेता है। बहनों, देखा जाए तो आज का युवा मोबाइल से जुड़ा नहीं, मोबाइल से जुड़कर आगे बढ़ रहा है। जिस स्क्रीन को हम वक्त की बर्बादी समझते हैं, वो उसके लिए दुनिया की खिड़की बन गई है। याद रखिए, कल तक ज्ञान गुरु के पास था, आज गुरु हर जेब में है। बहनों, कहा भी गया है, मोबाइल अब अकेलापन का साथी नहीं, कामयाबी का हथियार है। जो इसे सही चलाना सीख गया, वो जिंदगी की गाड़ी भी

0: ये गूगल नहीं सिखलाता। तेजी आई है, तहजीब कम हुई है। बहनों कहा भी गया है कि तकनीक समंदर है, तैरना नहीं आता तो डूबना तय है। और हमारे बच्चों को हम तैरना सिखाए बिना ही गहरे पानी में धकेल रहे हैं। नुकसान तकनीक में नहीं, अंधे इस्तेमाल में है। बहनों हमारे हाथों में है कि हम इसका सही उपयोग कर रहे हैं या गलत। बहनों कुल मिलाकर ना तो पुराने जमाने को कोसने से काम चलेगा, ना नई तकनीक से मुंह मोड़ने से। असली समझदारी यह है कि हम बच्चे के हाथ में मोबाइल तो दे दें, पर नजर संस्कारों पर भी रखें। बहनों कहा भी गया है, तकनीक को औजार बनाएं, ना कि मालिक। बहनों आज के समय में गुरु का चेहरा बदल गया है, पर गुरु का महत्व नहीं बदला। पहले गुरु स्कूल में मिलते थे, अब मोबाइल में भी मिल जाते हैं। पर याद रखिए, गूगल जवाब देता है, संस्कार नहीं। YouTube हुनर सिखाता है, हमदर्दी नहीं। वो काम आज भी माँ बाप और टीचर का ही है, इसलिए तकनीक को ट्यूटर बनाइए, गार्जियन नहीं। बहनों निचोड़ यह है कि संस्कृति किताब से निकलकर मोबाइल में आ गई है, पर संस्कार आज भी माँ बाप से ही आएंगे। और युवा पीढ़ी, वो अब लकीर की फकीर नहीं, लकीर बनाने वाली फकीर है। बस इतना याद रखना, फोन स्मार्ट है, उसे चलाने वाला स्मार्टर होना चाहिए। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, आज का बच्चा अगर दिन भर फोन में घुसा है तो उसे कोसिए मत। एक बार प्यार से पूछिए, बेटा आज फोन में नया क्या सीखा? हो सकता है उसने आज कोई नई शब्द सीखी हो, कोई नई लॉजिक, नई ट्रिक सीखी हो। अगर कुछ नहीं सीखा तो आप प्यार से उसे समझाएं, क्योंकि डांट से बच्चे दूर हो जाते हैं, बात से बच्चे पास आ जाते हैं। थैंक यू।
1: बहनों हम सुन रहे थे वार्ता के अंतर्गत वार्ता, जिसका विषय था घर के चमकते सितारे बच्चे, और वार्ताकार थी रोशनी चंदवानी। और बहनों आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले फिर से सुनते हैं ये संदेश।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: GST चो दर के कम करलो ने सोझे मनुक जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से, बल्कि जानवर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। GST ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से, नुआ कीमत ले सामान बना तो लोग और घेन तो लोग दोनों के लाभ मिरे दे। ये नुआ GST दर 22 सितंबर 2025 ले लागू होए दे।
1: बहनों प्रेम सिर्फ महसूस करने की चीज होती है, इसे अभिव्यक्ति के बिना अधूरा माना जाता है, क्योंकि जब तक प्रेम है और उसका इजहार ना हो तो बात अधूरी सी रहती है। और आपको इंतजार होगा कि हमने आपके लिए फिर से कौन सा गीत लाए हैं, तो बिल्कुल आपके इंतजार को खत्म करते हैं और हम सुनवाते हैं आपको फिल्म लापरवाह का ये खूबसूरत सा गीत, जिसे स्वर दिया है किशोर कुमार और चंद्रानी मुखर्जी ने। गीत के खूबसूरत शब्द लिखे हैं रमेश पंत ने और संगीत दिया है पप्पी लहड़ी ने।

बहनों, हमने सुना इस खूबसूरत से गीत को फिल्म लापरवाह से, और वक्त हमें इशारा कर रहा है, घड़ी की सुइयां हमें बतला रही है कि अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। किंतु हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा। इसके लिए आप हमारा पता नोट करें। हमारा पता है द्वारा उपनिदेशक, आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर, पिन 494001। और बहनों, अब तो मोबाइल का जमाना है, तो आप हमें SMS या व्हाट्सएप भी कर सकती हैं। इसके लिए हमारा नंबर नोट करिए, 9425590590, 9495590। और बहनों, अब कार्यक्रम से डॉक्टर मधु जैन को दे अनुमति। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे शहरी महिला बहनों का अपना कार्यक्रम घर आंगन, मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब समाचार हम दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चुगोट।
2: निदान पहिल कीड़ा होय से तना छेदक। ये कीड़ा फसल के पोडरा तो बेरा अरु पील धर तो बेरा जुगे करु नुकसान अमराय से। ये कीड़ी मन फसल चो तना भागनी भीतरे ओलुन खौक मुरियाय से। एचो कारण ने जुगे करुन बूटा सुखे से अरु बाली निकरलो ने बले सुखा दखा दय से अरु बूटा के खंडिक झिकुन दिलो ने फुकनाय बहारिया ऐसे। एचो निदान काजे कीड़ी मन के मरला तो काजे पहिल फसल चो पलहा रलो बेरा ये थाने कार्बो फ्यूरान 3G नाव चो उखत 33 किलोग्राम 1 हेक्टेयर बल्ले 2.5 एकड़ बेड़ा चो हिसाब ने देतो राय। असने बूटा पील धरतो बेरा कारटाप 4G

25 किलोग्राम नहले फिप्रोनील ओखद 0.3 g 25 किलोग्राम अढ़ाई एकड़ बेड़ा हिसाब ने देतो राय। असने धान पोडरा तो तमल ने मोनोक्रोटोफास 2 मिलीलीटर नहले क्लोरोपायरीफास 3 मिलीलीटर के 1 लीटर पानी चो हिसाब ने छिड़काव करतो राय। असने दूसर कीड़ा होए से गंगई, ये कीड़ी बले धान फसल

0: 33 किलोग्राम अढ़ाई एकड़ बेड़ा हिसाब ने बेड़ा ने देतो राय। दूसर हिसाब कर दो ले बूटा पील धरतो बेरा फोरेट 10 किलोग्राम अढ़ाई एकड़ जो हिसाब ने नाले फिप्रोनिल 0.3 25 किलोग्राम अढ़ाई एकड़ जो हिसाब धरून बेड़ा ने देतो राय। असने गोटो कीड़ा होए से माहू तो धान फसल चो पलहा पोडरा तो अरु बाली निकरतो समय ने जुगे करून ये कीड़ी नुकसानम रहुआ। ये कीड़ी के पंडरा माटी रंगिया अरु पतरंगिया होए से पंडरी अरु माटी रंगिया माहू कीड़ी बूटा चो मुख्य तना भाग ने अरु हरा माहू कीड़ी पाना ले रस की चुहकुन बूटा के कमजोर करे से। ये चो निदान काजे पहल पंडरी माहू तो पलहा काजे कार्बोफ्यूरान 3G 33 किलोग्राम अढ़ाई एकड़ बेड़ा चो हिसाब ने ये उखत के देतो राय। असने पील धरतो बेरा इमीडाक्लोप्रिड नाचो उखत 75 मिलीलीटर अढ़ाई एकड़ चो हिसाब ने बेड़ा ने देतो राय। असने माटी रंगिया माहू काजे बूटा पील धरतो समय ने कार्बोरिल 2 ग्राम 1 लीटर पानी संगे देतो राय। असने बूटा पोडरातो बेरा इमीडाक्लोप्रिड नाचो उखत 100 मिलीलीटर अढ़ाई एकड़ चो हिसाब ने बेड़ा ने देतो राय। असने बाली निकरतो बेरा इमीडाक्लोप्रिड नाचो उखत 125 मिलीलीटर 1 हेक्टेयर बल्ले अढ़ाई एकड़ बेड़ा ने हिसाब धरून भाती देतो राय। दादा दीदी मन असने गोटो कीड़ा होए से जेके बोल सो चितरी। ये कीड़ा नानी रलो बेरा फसल के जुग्गे नुकसान अमरा हुआ है। ये कीड़ी पाना मन के दोनों बाटले कटा कटा जोड़न भाती पाना चो हरा भाग के रोखुन खाए से जिचोले पाना ने पंडरा धारी पड़े से। ये चो निदान काजे बूटा पील धरतो बेरा क्लोरोपायरीफास नाचो उखत 1500 मिलीलीटर अढ़ाई एकड़ बेड़ा चो हिसाब ने धरून भाती एके देतो राय। असने बूटा पोडरातो बेरा फिप्रोनिल नाचो उखत 800 मिलीलीटर अढ़ाई एकड़ हिसाब धरून भाती देतो राय। असने गोटो कीड़ा होए से बंकी। ये कीड़ी वाले धान चो फसल के खूबे नुकसान अमराय से और ये कीड़ी पाना के ऊपर ले कतरून हुंचो खोल असन बनाए से और एचो भीतरे ओलून पाना चो हरा दखा देतो बीती जीनिस के रोघुन खाए से। एचो को फसल ने होलो ने पाना ऊपरे कतरलो महा और पंडरी धारी असन दखा दे से। तो ये कीड़ी के मरला तो काजे पील धरतो बेरा इंडोसल्फान नाचो उखत 850 मिलीलीटर नहले मोनोक्रोटोफास 850 मिलीलीटर उखत अढ़ाई एकड़ हिसाब ने देतो राय। असने गोटो कीड़ा होए से गंधी बग। ए नाचो नानी बड़े कीड़ा दोनों पाना और बाली ले रस के चूह को नुकसान अमराय सर। बाली निकरतो बेरा एचो कोप जुगे करुण होए से। एचो निदान काजे मैलाथियान चो कार्बोरिल चूर्ण 30 किलोग्राम के अढ़ाई एकड़ बेड़ा चो हिसाब ने बेड़ा ने भुरकुन देतो रहे। और गोटो कीड़ा होए से कटुआ। ये कीड़ी के फौजी कीड़ा वाले बोलुआत। ये कीड़ी फसल चो पलहा बेरा पाना के अरु बाली निकरतो बेरा बाली के कार्टून बेड़ा ने घसराउन दे हुआ है। एचो निदान काजे पलहा ने ये कीड़ी चो को फोरो ने फिप्रोनिल 1000 मिलीलीटर अढ़ाई एकड़ बेड़ा चो हिसाब ने बेड़ा ने देतो राय।
1: आप सुन रहे थे कृषि सामे की बेड़ा खड़ा चो गोट। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:10 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। श्रोता सुमन सुनने वाले सभी श्रोताओं में श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में स्वीकार कीजिए हरी प्रिया का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं सुखविंदर सिंह, उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज में। गीत की रचना की है जावेद अख्तर ने, संगीत है AR रहमान का और फिल्म का नाम है लगान। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी श्रोता साथी। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन। भद्रसी से आप हैं पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन और खुशबू सेन। यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से, विनोद खड़से। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अबान अब्बासी। गुमला झारखंड से SM जावेद और सगुफ्ता अंजुम। गोरबा बिलाईगढ़ से आप हैं देवलाल कर्श, कामनी कर्श, यश कर्श। जेल रोड रायगढ़ से भाई नरेंद्र कुमार तिवारी। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया।

राजदारानी और हिना कौसर, घंटाघर चौक खंडवासी, संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, ताजपुर मोरबा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री पुंज, पिंकी रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली साकरा से जयंत कुमार बैरागी। लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश का ये गाना।

किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज़ आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।

रावत, पद्मनी रावत, शुभम और सौरभ रावत, बेमित्रा से भरतलाल सिन्हा, लव कुमार और लकी सिन्हा, सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, पटियाला से आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, किरण, गीतू, निहारिका और वेनिश बत्ता, खेरपा बाजार बालोद से आप हैं जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलो दास मानिकपुरी, जयदास, देवेश दास, धनवंतरी बाई, मोतीन बाई और गणेश राम, सुभाष वार्ड भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित अमीन यादव, गिरीश करण यादव, युवान ढाबीस यादव, अमरपुर पेंड्रा से रेखा देवी, श्वेता देवी और सुरुचि देवी श्रीवास्तव, लबी श्रीवास्तव, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता, बीबी स्वाति और पूरा माखीजा परिवार। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये गाना।

0: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: श्रोता सुमन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। लीजिए अब सुनिए एक जान है हम फिल्म का गाना शब्बीर कुमार की आवाज में। अनजान के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी श्रोता साथी। खुपटी से आप है बंडू लोहार, पोपलघट माया शिवांश चंद्रकला पोपलघट देवदास पोपलघट श्रीरामपुर भोकर से हरुभाव बिड़वे श्रवण और अनीता बिड़वे। जिला खंडवा से आप हैं जगन्नाथ पटेल कमला पटेल अंतिम ज्योति ललिता मनीषा शुभम देवी किशन भावना कनिका आदित्य मानस और मन पटेल। बुड़गहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति रामशरण प्रजापति चंद्रेश कुमार प्रजापति चंद्रकांता प्रजापति और शशिकांता प्रजापति। खंडवा से आप हैं अब्दुल गफार डावर खुशनसीब डावर अब्दुल हक डावर जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर। महामाया ग्राम दरचूरा से फिरंता साहू दुलोरिन साहू कामेश्वरी कुमारी प्रीतम कुमार साहू। दरचूरा से आप हैं ददुआ साहू भूरी साहू रेखा और मोतीलाल साहू। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर परमजीत आदिबा कौर महासमुंद से वली उल्लाह फकीर डब्बू उल्लाह फकीर परवीन असमा फकीर बुलंदशहर से बदरू वली अंसारी फर्जू अली अंसारी और फर्जी अली अंसारी। बेडी से राजेश सोनी कंचन सोनी गायत्री ढोमने वैष्णवी ढोमने चंचल ढोमने अर्जुन गवनेकर धीरज सवा सेरे। महाराष्ट्र से आप हैं बाबा साहब वड़ोदे मीनाक्षी

घर पे रजनी कनीरे और कार्तिक युवराज। लुधियाना पंजाब से विनोद पुरी वीपी रंजू, अशोक पुरी सुशील पुरी प्रेम पुरी बीके पुरी कैलाश पुरी नीलम पुरी और आर्यस पुरी। लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश का ये गाना।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम का अगला गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी कसम फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी श्रोता साथी। डोंगरगांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। चंडीगढ़ से आप हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। भाटापारा से आप हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर। सोनडीही से आप हैं सुब्रत चौधरी, बेबी अनिशा। रायपुर से आप हैं नीलू मेघ। राजनगर मधुबनी से आप हैं कुशेश्वर कांति गुप्ता, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता। लखनऊ से आप हैं मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता, पंखुरी गुप्ता। और राजनगर से आप हैं मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांश गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माधवी साध्वी, एमके गुप्ता, राजू गुप्ता और विनीता गुप्ता। जमशेदपुर से आप हैं अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी, राकेश कुमार। मैनपाट से आप हैं सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आबिदा थापा। बिहार से आप हैं परवीन डोम, शरीफुद्दीन और उनके साथी। मथुरा से आप हैं वसीम बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार। दयानगर नांदेड़ से आप हैं प्रकाश जैन, तिरुपति नगर लातूर से आप हैं संगीता जैन और सूरज जैन। शेरकोट जिला बिजनौर से आप हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश पर ये गाना।

0: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। लीजिए अब सुनिए प्यासा सावन फिल्म का गाना। आवाज है सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की। संतोष आनंद के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी श्रोता साथी। फकीरा रेडियो श्रोता संघ जिला बीड से आप हैं रणजीत कुमार नामदेव थोरात, रितेश, आकाश, रश्मि, रंजना और गबरू पहलवान थोरात। देवरी भाटापारा से आप हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। सुभाषवाड़ भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित अमीन यादव, गिरीश करण यादव, युवान ढाबेश यादव। लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। दीवाल से आप हैं शंकरलाल गंगराडे, वनीता गंगराडे, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराडे। जिला खंडवा से ये आप हैं अशोक कुमार वाघमारे, वंदना वाघमारे, भूपेंद्र वाघमारे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की रानू, रविन्द्र सेन और खुशी और रौनक सेन। गोल बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद रोहित और मोहित आर्य। उत्तराखंड जसपुर से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रियाफत, शमीम, परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर। लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश का ये गाना।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए बलमा फिल्म से कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में। इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी श्रोता साथी। दंतेवाड़ा बचेली से आप हैं बलराम सेन, इंदु सेन, रितिका, पुष्पराज, पोषण, पंचू और दिव्या। वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेश, सुषमा सुरेशो, निधि सुरेश से, परिधि सुरेश से और मायरा सुरेश से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी। जिला मुरादाबाद दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू कश्यप, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहनी, ऋतिक, बलबीर सिंह। इसी गीत की फरमाइश हम तक लिख भेजी है नारायणपुर कोटवा बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल और उनके परिवार के सदस्य। वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाव मराठा, परिसंजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पम्मी भाटिया। रेलवे कॉलोनी राजस्थान से आप हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और पूरा डागला परिवार। कोरदा लवन से भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम प्रसाद वर्मा, गुलशन कुमार वर्मा, शिव कुमारी वर्मा, हेमलता वर्मा और बेद किरण वर्मा। लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश का ये गाना।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में राजा और रंग फिल्म का गाना। गीत कृष्णा की है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। सुनने की चाहत रखते हैं आप सभी श्रोता साथी। मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, ऋषभ सिंह, लीलू सिंह, ऋतु सिंह। धनबाद झारखंड से अमित कुमार सिंह, प्रियंका सिंह, बेबी समृद्धि। झांझा बिहार से संजीव कुमार सिंह, पूजा सिंह, रवि, आरती सिंह। पटना बिहार से भुवनेश्वर सिंह और लीलू सिंह। इसी गीत को सुनना चाहा है महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव, भीषम दास मानिकपुरी। धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहते हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे और वैशाली बाठे। लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश का गाना और हरिप्रिया को दीजिए कार्यक्रम श्रोता सुमन से इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोता सुमन, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं दोपहर समाचार। अब हम

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब

0: ताली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हुर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हुर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने

0: मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
2: The significance is immense.
1: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
2: Greater economic engagement between these two large countries.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र

0: की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
1: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
2: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
3: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
1: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमरीका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमरीका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वाशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत

0: रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम कला और कलाकार।
2: दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा

0: जुनकी दिदी काय रसिया गीत रे ने
1: हाओ
0: गीत कुरिया भाई रला कार्तिक राम अरुण मंचो
1: संगवारी मान मैं बोलते रहे हम चला के और गोटो गीत आसे भाई
0: हाँ
1: नहीं तो केवल सुनो
0: हाँ आले गीत कुरिया वन पाँच चिता हूँ
1: आले हाँ

0: देखे तो नंगत लाग ली गीत के कसन बोलो बाजरी से पाए ढाक
1: ढाकने
0: और एक गाँव तेरा एगो सर पुजारी और मिंचो संगवारी तो जा तो समय बड़े हुए से तो विदा धरू
1: आले
0: कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सपा गाँव करिया कलाकार भाई मन के बहन मन के मैं झुनकी
1: और मैं दोस्त मु
0: हमें दोनों करो से
1: जुहार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला और कलाकार, मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:01 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। एफएम पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। शाम 5 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में लीजिए सुनिए शैलेंद्र का लिखा गीत। संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए शैलेंद्र का लिखा गीत, आवाजें हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है श्री 420।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। इस समय रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी अभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: तो ये दिलचस्प है कि जब पिच में उतनी रफ्तार ना हो और गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है तो आपकी बैट स्पीड बहुत मायने रखती है, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है। वो काम कैंप ने बढ़िया किया है और इसीलिए वो अब ज़्यादा तेज़ी से खेल पा रही हैं। स्ट्रोक्स अब इस पिच को देखकर उस हिसाब से अपने आप को ढाल चुकी हैं। सदरलैंड नए ओवर की शुरुआत करते हुए धीमी गेंद और उसमें पूरी ताकत के साथ कलाइयों को घुमाकर मोड़ दिया उसको ऑन साइड में और एक रन ले लिया। सेवा ब्रांट 52 रन बनाकर खेल रही है। 9वां अर्धशतक पूरा हुआ। 132 चार विकेट पर ये 19वां ओवर चल रहा है। इसके बाद एक ओवर रह जाएगा और ज्यादा से ज्यादा रन इंग्लैंड जोड़ना चाहेगा और ऑस्ट्रेलिया किस तरह से रोकेगा, क्योंकि सेवा ब्रांट काफी देर से खेल रही है क्योंकि बैटिंग काफी ज्यादा शेष रह गई है। हर गेंद पर भरपूर प्रहार करने का प्रयास इंग्लैंड का रहेगा। 7.27 का रन बनाने का औसत है। सदरलैंड लगातार धीमी गेंदें कर रही हैं। 114 के आसपास की गेंद पर केवल एक सिंगल। सो सिंगल से ऑस्ट्रेलिया को अब कोई परेशानी नहीं होगी इस समय खेल के, तो बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है। सर हिला रहे हैं बैटर, जिस तरह से कैंप हिला रही हैं उसको देख के लगता है कि निराश हैं। तो करें क्या इस पिच पर। फील्ड देखने को मिली तो आप थर्ड मैन दायरे के अंदर है, पॉइंट भी दायरे के अंदर है, कवर्स है, शॉट वो भी दायरे के अंदर नजर आ रहा है। हवा में झूलती हुई तैरती हुई गेंद को घुमाया लगभग फुल टॉस पे और दूसरे रन के लिए इस बार जा रही है। दिशाहीन थ्रो हाफ पिच पर आया, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाती। ये होता है दबाव बनाने का नतीजा। आसानी के साथ दूसरा रन पूरा। 3 गेंदें 4 रन अब तक बन चुके हैं। 135 चार विकेट पर। ये 19वें ओवर की 3 गेंदें अब तक हुई हैं। सेवा ब्रांट 54 गेंदों पर 23 गेंदों पर 33 रन बनाकर कैंप खेल रही है, लेकिन स्ट्राइक के समय सेवर के पास है। फुल टॉस में घुमाया एक बार फिर, उस बार वो गेंद थोड़ी गैप में जाती हुई भी दिख रही थी, इस बार सीधे फील्डर के पास। एक रन और। हर गेंद पर रन तो बन रहा है लेकिन बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है इंग्लैंड को। 5 चौके लगाए हैं ब्रंट ने अपने 55 रनों में 50 गेंदों पर। विकेट के चारों ओर खेली अवश्य हैं लेकिन इससे ज्यादा तेज खेलने की क्षमता रखती हैं। इम्प्रोवाइज भी किया है, उल्टे शॉट्स भी खेले हैं, रैंप और स्कूप भी खेले हैं। लगातार दूसरे मैच में उनका अर्धशतक। फिर धीमी गेंद हवा में झूलती हुई मोड़ा। बहुत ही बुद्धिमानी और चतुराई के साथ बॉलिंग कर रही हैं। कोई अवसर नहीं देख रही हैं कि बड़ा स्ट्रोक लगे, क्योंकि रफ्तार कम हो और वो भी इस पिच पर तो स्ट्रोक खेलना बहुत मुश्किल हो रहा है। व्हाइट हॉज सबसे अधिक रन इस टूर्नामेंट में 302। साउथ अफ्रीका की ओपनर टैस्मिन ब्रिट्स 225। सेवा ब्रांट तीसरे नंबर पर आ गई हैं 224। सदरलैंड की अंतिम गेंद और लगातार ब्रॉक होल में टिप्पा खिलाती हुई स्विंग होती हुई धीमी यॉर्कर 110 के की उसको रक्षात्मक रूप से किया। 19वां ओवर समाप्त हो गया 137 चार विकेट पर।
3: राइट देन वी कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंग्लैंड इनिंग।

0: सदरलैंड की अंतिम गेंद और लगातार ब्रॉक होल में टिप्पा खिलाती हुई स्विंग होती हुई धीमी यॉर्कर 110 के की उसको रक्षात्मक रूप से खेला। 19वां ओवर समाप्त हो गया 137 चार विकेट पर।
1: राइट देन वी कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंग्लैंड इनिंग।

0: आपने कितना स्कोर बताया था बताइए।
1: देखिए मैंने कहा था कि मैं जो पूरा वर्ल्ड कप के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की बोलिंग इकोनॉमी रेट है दैट इज 6.2 तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा था 140 150 के बीच में बिकॉज फाइनल्स है। फाइनल्स में ऑब्वियसली इंग्लैंड विल ट्राई द बेस्ट टू रीच 180। अगर आप 180 सोच के जा रहे हैं अच्छी गेंदबाजी हुई तो 140 150 बट आई थिंक They are 30 runs less.
0: Because,
1: definitely. Batting first,

0: दे हैव अ वेरी गुड बैटिंग लाइनअप. तो 30 रन मुझे अभी भी लगता है कम है इंग्लैंड के.
1: क्लियरली इट इज देयर एंड गिविंग गुड फाइट एंड जस्ट हैव टू सी हाउ ऑस्ट्रेलिया फेयर नाउ.
0: डेफिनेटली एंड देखिए बार बार कहता हूँ, उस समय मैच से पहले शो में ये बात की थी, एंड ऑफ द डे बॉलर विन यू द गेम्स, बैटर्स नेवर विन यू द गेम्स. तो लेट्स होप कि इंग्लैंड के स्पिनर्स जो दमखम है वो आज आए, अपना दमखम दिखाएं, ऑस्ट्रेलिया को मात दे, क्योंकि तीन बार फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को मात दी है, 2012, 2014, 2018.
2: तो लेट्स होप 2026 इंग्लैंड ने बनाया. आप ज्यादा चाह रही होंगी बट क्या फाइटिंग स्कोर है?
3: अभी इंग्लैंड की बारी बाकी है एंड वहाँ उनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स भी हैं एंड देखना ये है कि उनके स्पिनर्स क्या कमाल करके दिखाते हैं. वो बहुत जरूरी है. 150 स्कोर अगर उनके रिसर्च से उनके पेपर्स पे आंकड़े हैं उनके स्पिनर्स के, तो उस हिसाब से 150 भी उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते टीम के लिए वो. एंड सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लॉर्ड्स की पिच पे स्पिनर्स का बुक स्पिनर्स के हाथ में जो बॉल है और वो जिस तरीके से टर्न करेंगे आज, वो कितना मुश्किल होगा बैट मुनी के लिए खेलना और हमारी पैरी के लिए खेलना, एलिस पैरी. तो ये दोनों एक बैटर हैं कि उन पे ज्यादा इंग्लैंड की आंखें होंगी, नजरें होंगी कि उनको बाहर का रास्ता वो कैसे दिखाए.
2: एक समय था लग रहा था कि शायद इंग्लैंड की टीम टच करे 130 के आसपास, वो एक क्षण आ गया था वहां पे. लेकिन आपको लगता है अच्छी रिकवरी की, क्योंकि पावर प्ले उतना तो इफेक्टिव नहीं रहा इंग्लैंड के लिए, बट इट वाज गुड रिकवरी. आखिरी के 10 ओवर में लगभग 90 टच किया उन्होंने.
4: देखिए बिल्कुल, आप जब दो विकेट के पांचवें ओवर में गिर गए, पावर प्ले में आप स्कोर अच्छा नहीं रहा, उसके बाद तो आपकी कैप्टन है नेट सीवर ब्रेंट, वो उनका स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा है. उसके बाद मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि जो सोफी मलिक है, जब वेरहम इतनी गेंदबाजी कर रही थी, दो ओवर सिर्फ 9 रन दिए थे, और आपको ये भी पता होगा कि लेग स्पिनर है और नेट को उनके खिलाफ प्रॉब्लम आती है. पिछले 5 T20 इनिंग्स में 3 बार उनको वेरहम ने आउट किया है, उसके बाद उनका कोटा पूरा क्यों नहीं कराया गया जबकि अनाबल महंगी साबित हो रही थी, कुछ सोफी बाद में महंगी साबित हुई. तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बॉलिंग में अगर चतुराई से किया होता तो 130, जैसे कि आप कह रहे हैं 130 के आसपास ही इंग्लैंड का स्कोर रहता. लेकिन आखिर में कुछ फ्रेया कैंप ने अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जो ऊपर के क्रम के बल्लेबाजों को करनी चाहिए थी.
1: चेतन, बहुत ज्यादा कुछ कंसर्निंग तो लग ही नहीं रहा ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से, बहुत सारा ऑलराउंडर्स हैं इनकी टीम में, बैटिंग कोई कंसर्न नहीं है. कुछ ऐसा आपको लगता है कि कंसर्निंग हो सकता है ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए?
0: बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, टोटल जो 150 का नजर आ रहा है, इट वुड हैव बीन मतलब फील्डिंग की आप तारीफ करनी होगी ऑस्ट्रेलियंस जिस तरह की कैचेस पकड़े. अब इंग्लैंड को भी बहुत जरूरी है कि 150 मतलब आपको वो रन्स जो 15-20 रन्स कैसे फील्ड में रोकने हैं, मेक द लाइफ मिजरेबल फॉर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स. वो तभी हो सकता है अगर आप अच्छी फील्डिंग करेंगे, मतलब उनको 150 बनाने के लिए 170 बैटिंग करनी होगी, तब 150 बनाने के नजदीक पहुंचेंगे. इफ योर फील्डर्स बेसिकली मैं कहता हूँ फील्डर्स अगर अपने गेंदबाज मदद कर रहे हैं तभी आप मैचेस जीतेंगे. तो इस समय इंग्लैंड के पास गेंदबाज एंड फील्डर्स, वो जो ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखाया अपनी फील्डिंग में, कमाल फील्डिंग है. एक कैच देख लीजिए जैसे कैच पकड़े उन्होंने, जैसी फील्डिंग की कम से कम 20-25 रन रोके, तो अदरवाइज दिस टोटल वुड हैव बीन 170 ऑन.
1: एंड पिच इज गोइंग टू बिहेव एनी डिफरेंट?
0: नो, इट्स अ नाइस बैटिंग विकेट टू द बॉलर्स, इट्स लिटिल स्लो. आपने देखा होगा कुछ गेंदे बिल्कुल नीचे रह गई है, बिल्कुल लो रह गई है. गेंद नीचे रहती है इसका मतलब इट विल डेफिनेटली हेल्प स्पिनर्स. आप थोड़ा धीमा डालिए, गेंद तेज मत डालिए, बल्लेबाज को आने दीजिए गेंद के पास, आप गेंद को पहुंचाए बल्लेबाज के पास. थोड़ी सी स्ट्रेटजीज हैं व्हिच आई थिंक सो द बॉलिंग कोच विल बी टॉकिंग टू द गर्ल्स एंड आई होप. मैं अच्छा मैच देखना चाहता हूँ. देखिए हम एज ए इंडियन, मेरा इंटरेस्ट तो अच्छी क्रिकेट के ऊपर है, हमारी टीम बाहर है तो इसलिए हमारा इंटरेस्ट ये है कि अच्छी क्रिकेट और फाइनल

0: मिलो सजना। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी के शब्दों को सुरों में ढाला है आरडी बर्मन ने।
1: अच्छा तो हम चलते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम

0: चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम दोना। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मधुराम और साथियों के गाए हल्पी लोकगीत।
2: दादा भाई मथुरापुर

इनकी तो इतनी वाइट थी।

दौड़ना कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मधुराम और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

मीडियम वेव 396.2 और 2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। कल प्रातः 5:51 पर पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 14.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 12:28 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा समाप्त होती है। कल प्रातः 5:55 पर पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।